0: the payment apps, but which one is safe?
1: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है. तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज.
4: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: So many payment apps, but which one is safe?
5: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.
7: Senco se mera nata saalo purana hai. Ye mere liye bas ek brand nahi hai.
8: Ye hai ek legacy.
9: You know, designs kitne hain? Lakhs se bhi zyada dude.
10: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड खूबसूरत कारीगरी भी हाई क्वालिटी भी
11: एक परिवार अटूट भरोसा
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
14: सोच बदलो और बैंक भी

0: पूरे देश में एक ओपन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। जैसे आशुतोष ने बोला, ये हालात लास्ट 1975 में एक डिक्टेटोरियल रेजिम के अंडर देखा गया था। एंड शर्म की बात है कि इतने साल उसके बाद, इतने दशकों के बाद फिर से एक तानाशाह आज बैठा हुआ है जो पूरे देश को एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में डाल रहा है। यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, इतने संख्या में अगर लोग मोबिलाइज होकर खुद ब खुद आ रहे हैं दिल्ली, वो आ रहे हैं क्योंकि उनको पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट करना है, एक डेसिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में जाके प्रोटेस्ट करना है एंड अपना जो दुख दर्द पीड़ा आक्रोश है, जो अपने डिमांड्स है, उसको सामने रखना है। सरकार को तो बोलना चाहिए था कि आप हमारे पास आइए, एक डेलीगेशन लेके हमसे बात करिए और हम सुनेंगे और हम उस पर अमल करेंगे डिमांड्स को। लेकिन आज एक ऐसा सिचुएशन बना दिया गया वेयर द स्टेट इज एट वॉर विद इट्स ओन सिटीजंस, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक जंग लड़ रही है पूरे देश के नागरिकों के साथ।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: एक्सिस बैंक, दिल से ओपन।
1: म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: गिरनार, एक चाय हो जाए।
0: AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।

0: As the showdown over SIR continues, the opposition is set to march to the Supreme Court today. The India Bloc leaders' march is set to begin from Barakhamba Road at 1:30 p.m. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, announced the march, calling on opposition parties, civil society groups and citizens to join the march and demand the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. But according to sources close to the CJI's office, Chief Justice declined the meeting with the opposition as the issues that the opposition wishes to raise are already under consideration by the Supreme Court in a set of PILs. The Chief Justice also highlighted that the Supreme Court cannot interfere in the executive functioning on the administrative side, and the opposition must approach the court through the judicial process. Meanwhile, Rahul Gandhi has said they would submit a memorandum to the Chief Justice of India demanding an end to alleged vote chori, a halt to the special intensive revision of electoral rolls, and Gyanesh Kumar's resignation. Now, with this protest planned, entry and exit at 6 Delhi metro stations, including Rajiv Chowk, Central Secretariat and Patel Chowk, will remain closed from 6 a.m. to 4 p.m. today amid heightened security arrangements for the opposition march towards the Supreme Court.
1: Let me try to show you the visuals from the place from where right now I am reporting. This is the gate number 6 of Barakhamba Road metro station. And I would ask my video journalist Pradeep Gupta to come with me. We'll show you more visuals. You can see how Delhi police has also been deployed here because the gates are closed. If Pradeep can come and show you the closed gates also of Barakhamba metro station. There are 6 to 7 gates of Barakhamba. And these gates connect to various offices. Those are here at Barakhamba Road. But because of the closure of metro station, people are facing a lot of inconvenience. Many of them are forced to walk from Ramakrishna Ashram metro station till Barakhamba. Why? Because they are not able to get the transport facility also from that particular metro station till Barakhamba. So it is certainly causing a lot of inconvenience to the commuters. Remember that today in the morning we got to know about 6 metro stations being closed, which includes the metro stations like Barakhamba, Mandi House, Rajiv Chowk, Central Secretariat, Rail Bhavan and also Janpath metro station. All these...
0: And Shambhavi is joining me live on this story. Shambhavi, you're at the Supreme Court. What can you tell us about the security arrangements in that area, particularly as the Chief Justice has declined the meeting? He said that this is not going to be appropriate. What more can you tell us?
2: Well, till just 30 minutes ago, there was no security. There was not even a single police personnel you could have seen here. But in the past 30 minutes, you can see that now there are forces here and they are preparing to amp up the security just in case the protest manages to reach here. Although given the circumstances and that they don't have the permission, and even yesterday when Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge claimed that they will be sharing a memorandum with the CGI and they seeked an appointment for a meeting when CGI declined, citing extensive reasons given that now is not an appropriate time for the CGI to meet them. And they also claimed in several bites that they have an appointment with the CGI between 4 to 5 p.m., which was again declined by the office. So now they have started amping up the security a little bit. You can see a little bit of force. The roads are still completely open. There are no barricades here. It's completely normal traffic movement. You can see from one end of the street to the other end of the street. But still, they are definitely preparing. There was a briefing going on with the security personnel here just around 10 minutes ago. They were being briefed about how to deal with in a circumstance when or if the march reaches still here. But several important observations made by the Supreme Court regarding these security arrangements even yesterday in the Sunday special sitting of the Supreme Court before Justice Bagchi and Mohana, they expressed their concern over barricading of several streets surrounding the Janpath and Kartavya path. And the barricading outside the Supreme Court was immediately removed after the court order asking not to do so. But of course, the Supreme Court, one thing which is very important to understand, the Supreme Court has said that you do and take whatever measure is important to maintain law and order. Because the topic of the barricading, the internet shutdown, everything was brought up. So today you can see that, of course, compared to the 45 metro stations, there are only 6 metro stations shut. There are no barricading outside Supreme Court, very little force, no internet shutdown. So definitely little lower status of the security arrangements outside the Supreme Court.
0: All right. Thank you very much for that, Shambhavi. Keeping a close eye on what is happening in the national capital and particularly outside the Supreme Court. Supreme Court security has been beefed up, and as my colleague Shambhavi was showing us and the visuals on your screens right now, viewers, police bandobast is coming in as the protest time, the protest call time comes closer. Traffic near the Supreme Court has been diverted. There are barricades on the roads. Congress workers are assembling near the Supreme Court as the India Bloc is set to march, seeking Chief Justice, a meeting with the Chief Justice at around 1 p.m. Ashutosh Mishra is joining me on this story. Ashutosh, you've also been on the streets of Delhi since this morning. What can you tell us about what's happening? What's the situation on the ground?
3: High voltage drama, action-packed day, and that looked like that, you know, with Sunday, probably the protest of week ended, but that looks like it's a new beginning of the protest week starting from today, as it's now going to be started by India Alliance, and then tomorrow the CJP, as they are also checking out strategy. But what it looks like, metro station shut down, but after following the Supreme Court orders, we do not see the mindless barricading or the, you know, mindless restrictions, no internet shutdown somehow today. But yes, it is also bringing the supporters, workers of the Congress Party. I'm here at Himachal Bhavan, just at Mandi House. Since the metro station has been closed, the Congress workers with the slogan, banner, poster have reached out in a good number to Himachal Bhavan. Now they're waiting since 12:30 is the time by the party. They'll be gathering at Connaught Place. From there, they'll be marching. And just, you know, as a preventive measure, the Delhi police have barricaded out this area. They've also put out a poster that since BNS 163 imposed, they cannot carry out a protest. They cannot, you know, mobilize workers here. Also, all the peripherals of the roundabouts of Mandi House, Barakamba, Bhagwan Das Road, remember, 700 to 1,000 meters, that's the total distance of the march, if at all they are permitted to carry out. But at Bhagwan Das, the early point near Doordarshan, probably will be the time where they all will be detained. And for the detention, you know, all the steps have been taken, including CRP, the RAF, the Delhi police, adequate number of these buses to detain the Congress workers and the leaders, India Bloc leaders, if they start marching. However, you know, something that is a relief for the commuters is that buses are plying so far. There's a taxi, auto rickshaw also plying. But more importantly, in the Lutyens Delhi, the heart of Delhi, the 6 metro stations entry and exit have been prohibited. Now, you know, lakhs of people use these entry and exit in the Lutyens Delhi for their office, because there are central establishments located, their private establishments are located. So that has created huge discomfort and inconvenience to the lakhs of commuters this morning. However, since the other buses and other routes are quite flying, so that will delay eventually for them to reach offices. But since these all areas which were now prohibited earlier in the protest are operational, and as and when the march begins right behind me from Barakamba through Bhagwan Das Road towards the Supreme Court area, these all going to be blocked, and once they start the march, since there is a prohibitory orders already in place, the CGI, I mean, himself has allowed not to meet. He has sent the communication to the LOP office. So clearly anticipating that this would be a point where all these leaders, if they start marching, would be detained, taken to the detention center. So this is going to be a high impactful day as far as India Bloc protest is concerned. And again, beginning from Monday, since we are anticipating other groups, the pressure groups, the CJP and the other political parties, this is going to be a week-long such, you know, protest in the national capital.
0: Right. So, Ashutosh, as you've just mentioned, this is today's protest is called by the India Bloc. They want to march towards the Supreme Court. There are also other protests possibly in the offing in the next few days, because we've seen continuing protests over the last few days as well. And yesterday we saw that unprecedented hearing in the Supreme Court where the court said you have to allow the people to protest, particularly outside the areas where 163 has been imposed. Today, however, we have multiple areas where 163 has now been imposed, prohibitory orders have been imposed. What can you tell us about the police bandobast and whether the police is also keeping in mind the fact that the court has said you have to allow the right to protest, but you can restrict according to law and order.
3: So far, the protests, I mean, from 6th of October, you see, have been peaceful. There have been, not been reports of violence. Of course, when you violate BNS 163, the police is bound to file FIR. There have been, aggressive confrontation between the protesters and the police. But so far, it has been extremely peaceful. There have not been reports of such scale of violence that often we see in a different kind of protest. So there's a pressure group like CJP. Then there are political parties. AAP carried out protests. Left students carried out protests yesterday. The Congress itself carried out protests starting from 6th of October. And today, yet again, the entire India bloc is carrying out. The protests likely to continue, as I am reading with the sources from different these pressure groups, until the objectives are achieved. And the objectives are pretty much, they have made it clear that the CEC, Gyanesh Kumar, has to go. Now, as and when that happens, when will that happen? They are also planning out, we know, for the impeachment. But that's as and when that happens, that's a different subject. But for now, since the public optic, they are trying to build up a momentum, and not it is only limited to CC Gyanesh Kumar, but remember, somewhere it is also escalating their target towards the government, towards the leadership in the government. And clearly that's why we see the protest is escalating almost every day. They are trying to build up a momentum, building up a narrative, bringing all the opposition parties together, because this is not just going to end up here. But, in a month from now, we're also going to go for one of the largest state elections in 5 states. So every momentum that you start from street takes to conclusion, even to the poll bouncy. So there are a lot of messaging behind it. Remember when Rahul Gandhi posted about a video how the people were targeting, the Delhi police said, no, we are not working in that way. We are, maintaining law and order. There are accusations that how police working with the PPP model involving antisocial elements in the crowd. So there are a lot of things happening. So far, daytime, we see the police maintaining restraint. All of a sudden in the evening comes a different type of videos how police is allowing antisocial elements to blend in the crowd and then create a chaos. A lot of things are happening, accusation, post-accusation, clarification, videos. But amidst of all that, this is also in politics, it's an optics and message of strength and unity by the opposition parties. Clearly, when it comes to the issue of SIR and the CEC Gyanesh Kumar. And that's why we see this high voltage drama, clearly an action-packed day from 6th of October. And this is just first week of the day.
0: All right. Thank you very much for that, Ashutosh. Keeping a very close eye on what is happening in central Delhi. And as he says, this is not likely to be the end of the protest. Moving on, we've got some breaking news that's coming in. India Today brings you an exclusive news break from the interview of AIMIM chief Asaduddin Owaisi. Owaisi mocks Akhilesh Yogi Ayodhya fight. Owaisi says Akhilesh and Yogi are merely shadow boxing. Yogi should explain Sambhal mosque raising. Akhilesh must explain fielding money bags MP.
4: आप आजमगढ़ में थे कल और अगला दौरा आपका रामपुर का है, फिर आप कैराना जा रहे हैं. चुनाव की तैयारियां किस तरीके से चल रही
5: हैं? चुनाव की तैयारी ही के सिलसिले में इन सब बड़े बड़े मुकामात पर हम जा रहे हैं और ये तमाम मुकामात जो हैं इसकी एक पॉलिटिकल बड़ी सिग्निफिकेंस होती है और हम अपने अध्यक्ष के साथ, अपने पार्टी के जो जोनल इंचार्ज हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं और जाहिर है आने वाले विधानसभा के लिए हमारी कोशिश यही है कि और हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमको जनता भरोसा कर रही है, उनकी मोहब्बत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है और इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट्स विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर एक नई तारीख को रकम करेंगे.
4: आपने कहा कि मुख्यमंत्री संभल आ जाएं, अखिलेश गोरखपुर चले जाएं, आपस में क्या
5: ये दोनों में नूरा कुश्ती और अखिलेश यादव में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में मुद्दा वहां पर हजारों करोड़ की चोरी है. वहां पर SIT की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, जनता के हाथ में नहीं है. जो लोग जेल में है वो बेल पे निकलना चाह रहे, जो मेन बड़े बड़े लोग जो चोरी किए हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं बजाय उस पर फोकस करने के. दोनों में नूरा कुश्ती हो रही है. ये बोल रहे हैं अयोध्या तुम आओगे, वो कह रहे हैं तुम आ जाओ, हम कह रहे हैं कि बस छोड़ो ना, तुम योगी आदित्यनाथ संभल लड़ लीजिए, हम वहां उनको हरा देंगे, आप गोरखपुर जाइए और जाकर गोरखपुर जनता से कहिए कि आपने अपने परिवार के लोगों को 30 साल से लोकसभा भिजा रहे हैं और आपने नरेंद्र मोदी के आदमी को अपना लोकसभा में कैंडिडेट बनाया, वो आदमी को जो मोदी के 25 साल मुकम्मल होने पर पब्लिकली मुबारकबाद देता है।
4: मोदी साहब चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश को और योगी को चुनाव लड़ने के लिए सामने।
5: हाँ, अब दोनों कह रहे हैं ना, अयोध्या को तुम लड़ो आ जाओ बोल रहे हैं, तो जब पब्लिकली एक बात हो जाती है तो तबसरा करना हमारा काम है, इसीलिए तो हमसे पूछ रहे हैं। हमने कहा चलिए आइए आप संबल लड़िए मुख्यमंत्री, आप जाकर संबल में बोलिए कि हमने मस्जिद को तोड़ दिया था, देखिए बुलडोजर इस्तेमाल किया, आप जाकर गोरखपुर में बताइए कि आपने मोदी के एक चाहने वाले को हमने राज्यसभा दिया है और उनके पिताजी ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हराया था झारखंड में, तब भी हमने उनको कैंडिडेट बना दिया।
4: दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी हो या इंडिया अलायंस हो, लगातार आप देख रहे हैं मैदान पर हैं लोग, सवाल ये कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लगातार इस मुद्दे को उठाने आए हैं वो क्यों नहीं?
5: आप हमसे बात नहीं करना चाहते हैं? हाँ, हम तो ऑफर दिए आइए बैठिए बात करेंगे, मगर आप बात नहीं करना चाह रहे और आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्या समझ रहे हमको? हम बराबरी की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, तुम्हारे पीछे क्यों खड़े होंगे? आप करिए ना, हम आपका हिस्सा नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, पार्लियामेंट लोकसभा के फ्लोर के ऊपर मैंने और हमारे इम्तियाज जलील उस वक्त के विधायक ने यह साफ और वाजे तौर पर कह दिया कि यह कानून जिसको मोदी सरकार लाई है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, यह गलत है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने ही मंत्री को चूज करके वोट डालेंगे तो 2:1 होगा, एलओपी होंगे। और हमने कहा था कि आप लीगल इम्यूनिटी क्यों दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पर केस बुक हो सकता है, तो ये कानून को हमने कह दिया कि ये कानून अगर बिल अगर कानून बनेगा तो देश की जनता में इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी पर सवालिया निशान उठेगा, उठ चुका है। एसआईआर के हम शुरू से खिलाफ थे, बिहार के एसआईआर के खिलाफ कौन सुप्रीम कोर्ट गया था? हमारे अध्यक्ष अख्तर अलीमान पार्टी की तरफ से। किसने सुप्रीम कोर्ट को 1000 नाम लिख कर दिए थे जो जिंदा थे? एएसडीडी में इनका नाम आ गया था, हमने किया। तेलंगाना में ऐप किसने बनाया 2002 के अटल, इसका महाराष्ट्र के लिए बनाया, उत्तराखंड के 3 जिलों के लिए बनाया, दिल्ली के लिए बनाया। हमारे पार्टी में सिर्फ हमारे पार्टी के एक ऑफिस के ऊपर 1,90,000 लोगों के नाम है जिनको हमने सर्विस किया, हेल्प किया 2002 के अटल के ऊपर। हम चाहते हैं कि एसआईआर जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जरूर आया मगर गलत फैसला है वो, और ये कानून में तब्दीली लाई जाए। हम तो शुरू से कह रहे हैं इस बात को।
4: अलायंस की आपने बात की है, 2 अक्टूबर आपने कहा था, क्या अब कोई पिक्चर तस्वीर साफ हो पाई है कि किसके साथ आप जा सकते हैं कि छोटे दल हैं?
5: जितना जल्दी हो सके आपको बताएंगे।
4: समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, आजमगढ़ फिर रामपुर और फिर कैराना, ये सब स्ट्रांग होल्ड्स हैं इंडिया।
5: नथवानी किसका आदमी है भाई? अगर नथवानी हमारा होता तो आप क्या बोलते? तुम कैसे देखो ओवैसी का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के 25 साल मुकम मुबारकबाद दे रहा है, तुम्हारा कैंडिडेट है और मोदी की मुबारकबाद दे रहा है, और तुम पीडीए की बात करते हो। अखिलेश यादव को अपना चेहरा नहीं दिखता आईने में? कोई तुम्हारा पीडीए है कि मोदी को मुबारकबाद दे? ये तुम्हारा कैंडिडेट है जिसके पिताजी ने झारखंड में इंडिया अलायंस के विधायक को खरीद कर हरा दिया, और दुनिया जानती है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में बगैर नरेंद्र मोदी अमित शाह की इजाजत के कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वो आपका कैंडिडेट गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, बिल्ली जब दूध पीती है ना, ये समझ दुनिया नहीं देख रही, देख रही है आप किसका दूध पी रहे हैं, अकेलेश हम जानते हैं।
4: आपने कल लाल टोपी का भी जिक्र किया है और कहा कि जो है लाल टोपी का साथ दोगे तो गुलाम बनोगे, नेता नहीं बनोगे, आजम खान को लेकर भी आप बहुत सॉफ्ट लग रहे
5: हैं। बिल्कुल सही है, देखिए मुसलमानों की कई नस्लों ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून पसीना लगाया, मुलायम सिंह यादव को नेताजी बना दिया, क्या मिला आपको बताओ? आप आजमगढ़ में आपके 2 यादव इंजन हैं, विधायक भी है सांसद भी है, पहले आपके मुलायम सिंह साहब भी वहां के एमपी थे, आपने एक यूनिवर्सिटी भाई इतनी बड़ी 2 हीरे हैं आजमगढ़ में, शिबली एकेडमी दारुल मुनफ्फसीन जो बोलते हैं और शिबली कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया आपने? सैफाई में आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी, ला तादाद नंबर नहीं देख सकते डिग्री कॉलेज स्कूल बना दिए, यहां क्यों नहीं किया आपने? 4th जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें गरीब सबसे ज्यादा है।
4: मायावती जी को लेकर क्या स्टैंड है आपका जो चल रहा है विद इन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में, आकाश?
5: हम उस पर तबसरा नहीं करें, पार्टी के इंटरनल में हम क्यों जाएंगे, हमारा क्या करना है?
4: अगर वहां से आगे आते हैं तो आप गठबंधन
5: हमारा? नहीं नहीं, देखिए किसी पार्टी में जो हो रहा है वो पार्टी के उनका इंटरनल
4: गठबंधन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या,
5: अगर हमारा गठबंधन ہوگا کسی سے بھی تو ضرور آپ کو بتائیں گے.
4: کانگریس میں کل کئی تمام ویڈیوز آئے,
5: وہ تو سب منظر عام پہ آ چکا ہے, اب ہم اس پہ کیا بولیں گے؟ آپ خود چلا رہے ہیں اپنے ٹی وی چینل پر, ہم کیا بولیں گے اس بارے میں؟
4: ریاض کی گھٹنا ہوئی ہے
6: جس کے بیسس پہ میں نے اپنی اسمرتھتا ویکت کی ہے کہ میں مل نہیں پاؤں گا.
7: اور کیا ریزن آپ کی طرف سے؟
6: نہیں کان, دیکھیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیٹر کے کنٹینٹس آپ ان سے پوچھیے, میں نے اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی ہے.
8: ریپرزینٹیٹیوز پارلیمنٹ کے بھی ہیں, اس میں کس طرح سے آگے اپنی بات رکھے؟ کل سی جے پی بھی دو دن سے جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہا ہے.
6: دیکھیے سپریم کورٹ کے دوار سب کے لیے کھلے ہیں, کوئی بھی پٹیشن کسی بھی کوئی بھی چاہے وہ عام ناگرک ہے یا کوئی ماننیہ سدسیہ ہے کسی الیکٹڈ باڈی کا, کوئی بھی ہے, بھارت کا ہر ناگرک کا اس کا ادھیکار ہے, وہ ہمارے پاس آئے, ہم قانون کی ویوستھا اور قانون کے انروپ جو ان کی سمسیا ہے اس کا ہم اپنی طرف سے اس کی سنوائی کریں گے اور جو جس کو بنتا ہے اس کو ضرور اس کا ادھیکار وہ دیں گے.
7: لاسٹ کوشچن تھا, دلی کے حالاتوں پہ کیا کہیں گے؟ لگاتار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں.
6: نہیں, یہ لینڈ آرڈر کا مدعا ہے, یہ میرا وشن. نہیں, اس میں گراؤنڈ زیادہ ہے, اس میں میں نے ایک سے زیادہ گراؤنڈ دیے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بولا تھا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی سمبھاونا ہے, وہ وشے کل کو کورٹ میں آ سکتا ہے.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है
5: ये है एक लेगेसी
6: यू नो डिजाइंस कितने हैं लाख से भी ज्यादा डोर
7: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड खूबसूरत कारीगरी भी हाई क्वालिटी भी
8: एक परिवार अटूट भरोसा
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
11: सोच बदलो और बैंक भी
12: So many payment apps, but which one is safe?
13: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
14: It's the Mahi way.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जवाबदेही चाहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी से हम ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस के ये जो सांसद है डॉक्टर बीमोल, इनका उन्होंने इस्तीफा लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। जैसे ही जेएनयू से उन्हें निकाल दिया वैसे ही सांसद में हम ऐसे भ्रष्ट नेता नहीं चाहते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी पेट्रियॉर्की की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात करते हैं, एक तरफ देखा जाता है कि आंदोलन में, आंदोलन प्रदर्शन में वो कौन ही मारते हैं पुलिस कर्मचारी, महिलाओं को वो मारपीट करते हैं, एक जगह वो दिखाई देता है, एक जगह दिखाई देता है कि सपा के भूतपूर्व नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने भी ये कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती है। मतलब महिलाओं के सम्मान के बारे में ना तो कांग्रेस पार्टी अलर्ट है, ना संवेदनशील है, ना समाजवादी पार्टी संवेदनशील है। डिंपल जी का जब अपमान किया था मौलाना जी ने, तब भी अखिलेश जी यादव ने उनकी साइड नहीं ली थी, उनके बचाव पक्ष में कुछ भी एक वर्ड भी नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी थी जो विरोधी पार्टी के नेता के सम्मान में रास्ते पर आई थी और आंदोलन किया था। मतलब ना कांग्रेस, ना सपा, ना आप पार्टी, आम पार्टी ने भी स्वाति मालीवाल को बिल्कुल बुरी तरह से पीटा गया था उनको। तो कोई भी पार्टी ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, और कांग्रेस पार्टी का जो अभी सबूत सामने आया है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से।
1: तो हियर दी वुमेन एमपीज ऑफ बीजेपी पूजा, दे आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ बिमोल अंगमचा, एंड हियर यू कैन सी एज टू हाउ द वर्कर्स हैव गैदर्ड हियर एंड दे ऑल आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस एमपी बिमोल अंगमचा। दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली हु हैव कम हियर एंड दे आर सीन होल्डिंग डिफरेंट प्लेकार्ड्स। लेट मी ट्राई टू गेट इन अ वर्ड फ्रॉम मोर यू नो वुमेन लीडर्स हु हैव गैदर्ड हियर, बिकॉज़ इन लार्ज नंबर्स आई कैन सी एमपीज गैदरिंग हियर एंड डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस एमपी बिमोल अंगमचा।
2: यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी जी भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए लगातार अलग अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन हमें स्पष्ट निर्देश उनकी तरफ से मिलता हुआ इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मणिपुर से जो है मिलना चाहिए।
3: Look at that, Piyush Mishra bringing us a report that's a truck packed with the BJP leaders. The Bharatiya Janata Party is protesting in Delhi against Congress Party. And what is the reason? The reason is the BJP says that the smash the patriarchy fight that Congress Party, Rahul Gandhi specifically, is attempting to fight is all a farce. It's not real, because one of their own members of parliament have faced accusations and allegations from 11 students at the JNU for sexual explicit remarks, behavior, seeking sexual favors, and eventually was removed from the university. Now, this is a huge step, remember, that is taken and announced by the university. But the BJP leaders are saying, how is that enough? He's still a member of parliament. He still gets to come to the parliament and be a part of policy decisions. He needs to be suspended as an MP as well. Will that decision be taken by the Congress party? For now, it appears that the leaders are silent and they are possibly silently backing the MP as well. What does Bimal Akhoy Jam, the leader from Manipur, has to say? He believes that this is all a witch hunt and this is all deliberately being done against it and is politically motivated. Not only Delhi, even in Bengaluru, like the visuals on your screen, is where the protest is being organized by the Bharatiya Janata Party, and they are directly hitting out against Rahul Gandhi. They are saying that if Rahul Gandhi said smash the patriarchy is a big call, how does that even stand valid when your own senior member of parliament is accused of sexual harassment? This is on a day when the week begins with India Bloc, or the Congress specifically, initiating protests against CEC, against SIR, that happened earlier and now continues.
1: कर रही है कि इस पूरे मामले में जो सांसद है कांग्रेस के सांसद उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, और इसीलिए एक बड़ा सा बैनर लेकर यहाँ पर महिला सांसद पहुंची, उनके साथ साथ कई महिला कार्यकर्ता भी है, और उस पर लिखा हुआ है महिला सुरक्षा पर राजनीति नहीं जवाब चाहिए। और इसीलिए जो है यहाँ पर यही मांग लेकर महिला सांसद यहाँ पर पहुंची है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसद मार्च निकाल रही है, दूसरी ओर बीजेपी भी सड़कों पर उतर रही है और मांग कर रही है कि राहुल गांधी को जो है चुप्पी तोड़नी चाहिए पूरे मामले में। चारों तरफ अगर नजर दौड़ाए मेरे सहयोगी, एक बार आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, कई सारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के महिला कार्यकर्ता, उनके हाथ में अलग अलग तरह की तख्तियां हैं। तो प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट की दिल्ली में देखी जा सकती है, जहां पर कई महिला सांसद मौजूद है। कमल जी सहरावत यहां पर है, हमने कई कमल जी से भी बात कर लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह की रणनीति इस वक्त बीजेपी की, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर अभी तक राहुल

0: गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया है और इसीलिए बीजेपी के जो सांसद हैं वो यहां पर मौजूद हैं। मैं एक चीज तस्वीर और देख पा रहा हूं, जो महिला सांसद हैं उनके हाथ में तख्तियों पर लिखा भी हुआ है मास्क मेहनत से नहीं शोषण से नहीं, इस तरह मास्क मेहनत से शोषण से नहीं इस तरह की बातें करते हुए। मैम क्या मांगे आप लोगों की, क्या मांग आप लोग?
1: जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा दोहरा मापदंड करती है, बेटियां देश की बेटियां और 11 जिस बेटे जेएनयू के साथ जिस तरीके से यौन शोषण हुआ और उन्हीं के सांसद जिस तरीके से बेटियों के ऊपर बोले, मेरी मांग है कि राहुल गांधी ऐसे सांसद को बर्खास्त करें और अपने अपने आदत को अपने नेचर को सुधार ले, नहीं देश की महिला बर्दाश्त करने वाली नहीं है।
0: क्या मांग आप लोगों के लिए, आपके हाथ में तख्ती पे पढ़ पा रहा हूं, मार्क्स मेहनत से शोषण से नहीं। आप राहुल गांधी आज पीछे करने जा रहे हैं, आप चाहेंगे कि वो बोले?
1: बिल्कुल, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो महिलाओं के सम्मान के साथ है कि नहीं। जिन बेटियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, डॉक्टर विमोल जो उनकी पार्टी से है, वो उन पे जो आरोप लगे हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं, वो कब उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, कब उन बच्चियों के साथ वो खड़े होंगे, कब महिलाओं के सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी।
0: कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसदों की तरफ से और पूछ रहे हैं कि कब राहुल गांधी खड़े होंगे बच्चियों के समर्थन में, जो एलिगेशन लगे सेक्सुअल हरेसमेंट पर कब राहुल गांधी अपनी चुप्पी छोड़ेंगे, ये बात महिला सांसद कर रही है। कमलजीत शरावत दिल्ली से ही आती है, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैम दिल्ली में ही जेएनयू है और अब तक कांग्रेस की तरफ से कुछ खास इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए क्या मांग आप लोग लेकर?
2: जेएनयू की 11 छात्राओं ने वो सारी कंप्लेंट सच पाई गई, यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर बिमोल को सेक कर दिया।
3: कांग्रेस पार्टी
2: ये बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर दूर की बात है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के वो पूरे भारत में ट्रेवल कर सकते हैं, उनकी बहन प्रियंका जी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या ये 11 लड़कियाँ देश की बेटी नहीं है? अपने घरों से प्रोफेसर के साथ जब उनके ये संबंध पता चले उनके घर वालों को, क्या उनके ऊपर बीती होगी? तो कांग्रेस बेशक हजार बार चुनाव आयोग में सवाल उठाए, वो उनका हक हो सकता है, लेकिन इस विषय के ऊपर जवाब देना, अपने एमपी को बाहर करना, पार्टी में उनसे माफी मंगवाना, ये पार्टी का फर्ज है। और राहुल गांधी जी से आज यही सवाल है कि अब आपको दिखाई सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
0: आप नहीं दे रहे राहुल गांधी, इसी मांग को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के सांसद और कई महिला कार्यकर्ता पहुंचे और उनके हाथ में अलग तरह की तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है 11 बेटियों के पुकार न्याय मिले आपकी बात
3: प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम सब
4: मिश्रा शोइंग अस व्हाट द प्रोटेस्ट इज लुकिंग लाइक फॉर द बीजेपी। They have landed close to the Congress headquarters to protest against their member of parliament, saying the suspension or removal from the university is not enough. He needs to be suspended from the parliament and he needs to face stern action. All of this having followed what Rahul Gandhi's call had come in and as a Congress call to smash the patriarchy. Now that of course was in some way targeted toward the BJP as well. But now has it fallen back on them? Has it become a self-goal? Because with this recent incident and serious charges, and I maintain these were allegations and accusations based on which he was removed from the university and he's been dismissed now. The BJP leaders are asking, why just wait for the university to take a decision? What are the politicians at senior level doing to the party to where Bimal Akhayajam belongs? Now, remember that Bimal Akhayajam has been a very vocal leader when it comes to speaking for the Congress perspective, especially during the Manipur conflict, the ethnic conflict we had seen. He was extremely vocal also against the union government here. And that is the reason he's saying that there's a political witch hunt against him. But the allegations that have come in from the university are not by one or two students. 11 students have come forward to say, seeking sexual favors, showing pornography in the class without, and of course, without the knowledge of the students by the time they realized it was pornography. And during Viva and other interviews, asking questions that were clearly inappropriate in nature. And 11 students is a big number, ladies and gentlemen. And that is why eventually the university had to take cognizance of the matter. And it was the investigation was initiated and action was taken. But now an FIR has also been filed against him, which means further investigation will happen. And it could lead to either an arrest unless the leaders first themselves take a decision on Bimal Akhayajam, who still is the Member of Parliament from the Congress Party. Let's dip into the visuals coming in Karnataka, in Bengaluru, the protest is happening. In national capital Delhi, the protest is happening. Delhi, of course, is where the confrontation could happen. The Congress is organizing a protest from Barakhamba Road in central Delhi to the Supreme Court. The distance is not very far, but that is where primarily, as it is called, the Lutyens Zone, where the VVIP MP houses are located, the big organizations, institutions are situated. And that is why if the BJP also decides to go and protest near that location, it could lead to a literal confrontation. Otherwise, here itself, outside Congress headquarters, they have decided to sit on a stump. Mainly women leaders, like you can see, representing the BJP, and with the banners on their screen about how the Congress, or in their tenure, girls are not safe, and what women's safety is the Congress party talking about. Let's dip into the sounds coming in from the Congress protest, and this time, while the Congress has the, and we'll put out those images as well, the Congress party has posters and banners against CEC, Gyanesh Kumar, or against Prime Minister Modi or Home Minister Amit Shah. The BJP has these posters with Bimal Okoyajam and Congress leader of opposition Rahul Gandhi, saying, look at how the situation is in Congress, even when they are in opposition, that women are treated poorly around them. We have some more news coming in. We'll go across to that. But as of now, the BJP also, its units are launching their protests. Let's go ahead and tell you what the Congress party is up to and what the Bharatiya Janata Party is doing in turn. Bizarre things are happening in the Congress camp. Uttar Pradesh Congress's vulgar abuse, as it seems, for their own Mahila Neta. Now, Ajay Rai, of course, is a senior leader of the party, especially for UP and UP Congress. He and a woman Congress leader, Mamata, from Uttar Pradesh, got into a verbal spat. Ajay Rai's supporters were hurling abuses at this woman Neta. Why would you abuse, and all of this when they're from the same party? Abuses have been heard. As you can see, we had to beep out most of the abuses that were being spoken, and we had to, as per guidelines, beep it out.
5: Congress party office mein kal jab jis tarike se shapath grahan tha, उस दौरान जो कांग्रेस की पार्षद हैं ममता चौधरी और जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके बीच में गहमा गहमी कह सकते हो गई हैं। और इस बात को लेकर, पूरे इस मामले को लेकर आखिर क्या हुआ है, और पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ममता चौधरी। उनसे खुद ही पूछ लेते हैं। ममता जी, कल जब ये शपथ ग्रहण था, आखिर क्या हुआ था कि आपके साथ इतना सारा विवाद हो गया?
6: देखिए, पहली बात तो कल तक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि इन लोगों ने मारपीट क्यों करी, हाथापाई क्यों करी, चप्पल क्यों चलाई, और अध्यक्ष जी ने, अजय राय जी ने ये क्यों बोला कि औकात में रहे, औकात में रहे, जिसपे मैंने भी पलट के कहा कि औकात की बात मत करिए। ठीक है, आज कोई फुटेज नया चला रहे हैं कि मैंने कहा मुझे देखने का शौक नहीं है। अरे भाई, मैंने उनसे तो कुछ कहा नहीं, मेरी उनसे कोई टिप्पणी नहीं हुई। मैंने किस बात पे ये कहा होगा, या मैं, भीड़ इतनी थी इसलिए कहा, और उसके बाद वो पलट के आके पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो, और उसके बाद जूता चप्पल चला रहे हैं, तो ये बताइए कहाँ का न्याय है?
5: कमेंट क्या कर रहे थे आप लोगों से?
6: इन्होंने कहा कि औकात में रहना, अपनी औकात में। ठीक, जबकि मैंने, मेरी नजर से नजर नहीं मिली उनसे, मैंने उनको वास्तव में नहीं देखा, अभी भी यही कहूंगी। ठीक, भीड़ इतनी थी, जो फुटेज ये लोग चला रहे, उस भीड़ में अगर मैंने ये बोला है कि नहीं मुझे देखने का शौक नहीं है, तो ये कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? कल तक तो ये लोग कह रहे थे ममता चौधरी ने गाली दी, ममता चौधरी ने कुत्ता बोला, ममता चौधरी ने उनका गिरेबान पकड़ा, आज एक नई प्लॉटिंग लेकर आ रहे मीडिया के सामने सारे सर्च इनके, तो सीधे सीधे वीडियोस में खुला इन लोगों ने बोल रहे हैं मुझे दो टके की औरत, दो टके की औरत का शब्द बोल रहे हैं, और अब वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो खुलेआम हैं, र वाले, और वो सब जो महिलाओं के लिए अभद्र गुंडे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द खुले वीडियोस में चल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा शब्द मैंने बोला था जिस पे आप लोगों ने जूता उठाया, जूता उठाने का अधिकार किसने दिया, थप्पड़ मारने का, और भी महिलाएं थी वहां पे जो चोटिल हुई है, उनको भी वो जूते की चोट लगी है, चप्पल की चोट लगी है।
5: आपके साथ ही क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है कि इतना ज्यादा कि आपको अभद्र भाषा, गाली गलौज, जिसके साथ जूते?
6: मुझे ये लगता है कि पूर्व अध्यक्ष जी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको कंफ्यूजन हुआ है, उनको लगा कि उनके लिए टिप्पणी की जा रही है, उनके लिए कमेंट किया जा रहा है, जबकि कोई कमेंट किसी ने नहीं किया। भीड़ इतनी थी, इनके जो गुर्गे हैं उनका हमेशा से एक काम है, हटो हटो हटो, ए रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तो उसी में एक नया फुटेज ये लोग जो चला रहे हैं कि मैंने ये बोला कि अरे भाई मुझे देखने का शौक नहीं, तो ये कौन सा गुनाह है? मैं भीड़ में जाके डंडे खाऊं, मैं भीड़ में जाके धक्का खाऊं, क्यों खाऊं? क्योंकि ये लोग सब हमेशा घेरे ही रहते हैं। तो ये बात कौन सी बड़ी बात थी? और ना ये बात मैंने डायरेक्ट को अजय राय जी को कही, ना मैंने उनको गाली थी। इन्होंने तो खुद ही फुटेज से सिद्ध कर दिया कि ममता चौधरी बेगुनाह है। ममता चौधरी ने गाली दी ही नहीं, कल तक जो चिल्ला रहे थे गला फाड़ फाड़ के, गाली दी, कुत्ता कहा, गिरेबान पकड़ा, आज अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलेंगे आप लोग? अब तो हम लोगों ने सिद्ध हो गया कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और उनसे तो बिल्कुल ही नहीं कहा।
5: आरोप लगा रहे हैं कि गाली दी इस तरीके की बाहर निकल के।
6: अब तो नया फुटेज डाले है ना, वो नया फुटेज आप देख लीजिए। अब तो खुद ही अपनी बात का इनका खंडन हो गया कि मैंने कोई गाली दी ही नहीं।
5: पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उस समय भी क्या कैसा रवैया था, किस तरीके से आप लोगों से, क्योंकि ये इतना बड़ा
6: भाई, ना मैंने उनसे कभी अभद्रता करी पहले, ना उन्होंने मुझसे कभी कोई अभद्रता करी। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोल बोल के ये लोग प्लॉटिंग करे मुझे इससे मतलब नहीं, ना मैंने कभी उनसे बदतमीजी करी, ना उन्होंने मुझसे कभी बदतमीजी करी, बहुत स्पष्ट है। कल के दिन क्या उनको समझ आया, क्यों उन्होंने रिएक्ट किया, मैं किस बात में क्या कह रही थी, उनको क्या समझ आया, लोगों ने उनको क्या फीड किया, इसमें कोई बिचौले लोग हैं जिन्होंने ये खेल खेला है।
5: तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ममता चौधरी के ही साथ क्यों हुआ ऐसा, वहां पर तो और भी लोग थे?
6: नहीं नहीं, उनका ये कहना है कि इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया। अरे मैंने स्टेटमेंट जब दिया ही नहीं, आपको ना देख कर दिया ना आपको देखा। भीड़ भड़क्के में किसी को भी जाने का शौक नहीं होता, खास तौर से महिलाओं को चोट लगने का डर रहता है। इंसान साफ बोलता है क्यों नहीं भाई, उसको शौक नहीं है जाने का भीड़ में। तो ये कौन सी बड़ी बात थी जिसपे रिएक्शन, और इतना बड़ा रिएक्शन आया? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए अध्यक्ष जी से कि इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आया। और एक फुटेज मेरे पास आई है, मैं आपको सार्वजनिक करूंगी, जिसमें अध्यक्ष जी खुद कह रहे हैं कि इन सबको मारो
5: मारो। क्यों?
4: All right, we'll be tracking that and more. A new controversy, and this is within the Congress unit, and abuses like stay in your place, stay in your limits to this woman leader. We'll be tracking all that and more. I'm heading to a very short break. I'll see you at 12 p.m. on the lunch break. News and updates. Thank you.
7: You are watching India Today.
8: Savings account.
9: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
8: स्मॉल बैंक,
9: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
8: ओके
9: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
10: वक्त के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
11: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
12: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
13: एक परिवार, अटूट भरोसा।
14: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
15: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Good afternoon and welcome. You're watching the Lunch Break. I'm Pooja Shali. Let me take you through all the latest coming in at 12 p.m. on India Today. The top story coming in with the CJI Justice Suryakant rejecting India Bloc's request for a meeting. Says the top court cannot interfere in government's functioning, asserting that issues raised by opposition against CEC Gyanesh are already under top court's consideration.
1: कुछ रीजंस उसमें दिए हैं जिसके बेसिस पे मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि मैं मिल नहीं पाऊंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस लेटर की कंटेंट आप उनसे पूछिए मैंने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की है
0: पार्शियल कर्ब्स इन दिल्ली अगेन दिस आफ्टरनून अमिड प्रोटेस्ट मार्च कॉल बाय द ऑपोजिशन सिक्योरिटी टाइटेंड आउटसाइड टॉप कोर्ट टुडे सिक्स मेट्रो स्टेशंस हैव बीन शट टिल 4 पीएम ट्रैफिक डायवर्जंस अराउंड आईटीओ इन दिल्ली The dismissal from Jawaharlal Nehru University is not enough, says the BJP. The noose is tightening against Congress MP Bimala Kayajam. FIR has been filed against him. FIR is on the sexual harassment charges and that harassment from the complaints from JNU students. Abuse politics in the Congress unit in Uttar Pradesh. A woman leader is seen abused in front of the top brass of the state leadership. Former UP Congress chief Ajay Rai's supporters hurling abuses of the most sexist kind as the new chief assumed office. Mamata Chaudhary hits out at Ajay Rai.
2: मैंने उनसे तो कुछ कहा नहीं मेरी उनसे कोई टिप्पणी नहीं हुई मैंने किस बात पे ये कहा होगा या मैं भीड़ इतनी थी इसलिए कहा और उसके बाद वो पलट के आके पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो और उसके बाद जूता चप्पल चला रहे हैं तो ये बताइए कहां का न्याय है
0: In international news and now with an Indian connect, moment of Riyadh airport attack caught on camera. Missile strike has killed 13 people, wounded over 300. An Indian techie, Yusuf, who was on Umrah pilgrimage, also died in this attack. His family has been injured. There's been an FIR that has been filed against Aditya Thackeray of the UBT Sena. The MLA has now faced an FIR along with 25 others who have been named in the FIR. The Shivaji Park police have registered a case in connection with yesterday's protest, naming 25 individuals. Including, on top of all of these names, is Aditya Thackeray, Amit Thackeray, Sandeep Deshpande, Varun Sardesai and Mahesh Sawant. But with Aditya Thackeray, a young leader of the UBT Sena, an MLA of Maharashtra Assembly, this of course takes a certain precedence. Now what we are looking at is that is the visual of Aditya Thackeray. This was in the stir that was organized in Mumbai. And we'll try and get more understanding on what possibly led to an FIR against Aditya Thackeray and 25 others. For that, Dipesh Tripathi is joining me from Mumbai. Dipesh, good afternoon. What is the latest information that you have that you can share here on the lunch break about why an FIR against Aditya Thackeray?
3: Yes, good afternoon to you as well. Mumbai police lodged an FIR on Aditya Thackeray, Shiv Sena UBT leader, Amit Thackeray, MNS leader and the son of Raj Thackeray. Also, they have also registered an FIR against MLA Mahesh Sawant, Shiv Sena UBT MLA and Shiv Sena UBT MLA, Varun Sardesai, who is also a cousin of Aditya Thackeray. And yesterday they were protesting at Shivaji Park and while protesting, the permission was not given by the Mumbai police, but then also the protest took place and this protest was organized by Shiv Sena and MNS and therefore causing problem to the public and other relevant section, Mumbai police has lodged an FIR on the Shiv Sena and MNS leader and today once again they will going to protest at Shivaji Park. The section which were taken by the police under which the FIR was lodged is BNS section 189 subsection 2, 37 subsection 1 and 37 subsection 3 and 135 of BNS. Under this section, the FIR is lodged by the Mumbai police and they have served a notice to these leaders and they will going to soon have to record their statement. Also, whether any other action will be taken in the future or not, this will be decided. This will be decided by the police in the further
0: tracking all the latest on that because for this FIR will it be trouble for Aditya Thackeray will he be able to defend it We'll be tracking that. For now, remember, it's a day of protest versus protest. Now, while different reasons, different parties in different states, but in Delhi is where it will be of utmost significance. The Bharatiya Janata Party has organized a protest. Let's go across to that big news also that's coming in about how protests are being organized in national capital Delhi. So we knew that the Congress Party is organizing a protest, and that is on the CEC. The BJP has initiated a counter-protest. They are saying this protest is demanding the removal of Congress MP Bimal Akhoyajan, the leader from Manipur, and who's been dismissed from the Jawaharlal Nehru University on sexual harassment allegations. BJP Women Wing, their Mahila Morcha, have initiated this protest outside the Congress headquarters in Delhi. There's already a BJP Mahila Morcha protest being organized in Bengaluru, in Karnataka, which is a Congress-governed state. In Delhi, however, because there's already another protest happening by the Congress party, it's a dharna versus dharna that is happening. BJP says here, Congress's double standards are on display. Is this how they're going to smash the patriarchy? By having members of parliament who have been accused of sexual harassment, who've been facing investigations and have been dismissed from work. So BJP is now sacking and even arrest of this member of parliament from the party. Kamaljeet has spoken to some of these BJP women workers. Let's listen in.
4: मैम दिल्ली में ही जेएनयू है और अब तक कांग्रेस की तरफ से कुछ खास इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है. आप लोग यहां पर इकट्ठे हुए क्या मांग आप लोग लेकर
5: जेएनयू की 11 छात्राओं ने वो सारी कंप्लेंट सच पाई गई. यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर बिमोल को सेक कर दिया. ये बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर दूर की बात है. राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के वो पूरे भारत में ट्रेवल कर सकते हैं. उनकी बहन प्रियंका जी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ. तो क्या ये 11 लड़कियां देश की बेटी नहीं है? अपने घरों से प्रोफेसर के साथ जब उनके ये संबंध पता चले उनके घर वालों को क्या उनके ऊपर बीती होगी? तो कांग्रेस बेशक हजार बार चुनाव आयोग में सवाल उठाए वो उनका हक हो सकता है, लेकिन इस विषय के ऊपर जवाब देना, अपने एमपी को बाहर करना, पार्टी में उनसे माफी मंगवाना, ये पार्टी का फर्ज है. और राहुल गांधी जी से आज यही सवाल है कि अब आपको दिखाई सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
0: So that's Piyush Mishra speaking to the BJP MP. This is the Congress party organizing a protest right outside Congress headquarters. While the Congress party is initiating a protest and a march basically to the Supreme Court. Piyush Mishra now joins me for the latest on that. Piyush, is the protest still on? Till when are they planning to stay there? What is their demand? Isn't it enough that the professor who faced accusations and then an investigation has been dismissed from the university?
6: And now the main demand, Pooja, here is that this MP should be sacked and Congress leaders like Priyanka Gandhi and Sonia Gandhi should speak on this entire matter as they have maintained complete silence since Congress MP Bimal Akhoyajan has been suspended by Jawaharlal Nehru University. And that's why we are seeing large number of BJP workers and BJP women MPs have gathered here in front of Congress headquarters in Delhi. Here you can see as to how they all are demanding only one thing, that Rahul Gandhi must answer. Many of them are seen holding placards which reads Rahul Gandhi should answer and Marx Bennett say social se nahi. That is what their message is. At the same time, they are also holding a poster which reads JNU John Utpal Mahmood ne Rahul Gandhi ki karibi sansad Angoncha Vimal ke nishkasan ko lekar vishal pradarshan, which means they are protesting demanding that Congress MP Angoncha Vimal should be we have not seen any kind of action being taken. They could try to take a word from the MPs who have gathered here and understand the kind of sentiments those are there among these MPs. Because this is Malvika Devi, who is from Odisha. She is a BJP MP. Let's try to get a word from her. Ma'am, what are the main demands of MPs who have gathered here? I can also see a lot of
4: women workers gathering.
7: The only thing that we want is that the Sansad should be made to resign because he knows that he's done something wrong. It has been proven, there's full inquiry done. 11 students have come out and said from JNU that yes, they were molested and they have proof for it. This is not fair. When Congress party comes out and says they're standing for women, this is not the way to stand for women. They are not standing with women. They are only standing for their own agenda, which is to get power, get in back in politics.
4: Ma'am, what do you think? Why silence has been maintained by the top leadership of the Congress party?
7: That is what everybody wants to know, that someone who says I'm with the women is keeping quiet today, because obviously when it comes to their Sansad, when it comes to their workers, they don't have the guts to come out and stand up for what is right. Never had, never had.
4: Ma'am, you are protesting here. Congress along with various other India bloc leaders, they are again going to protest demanding resignation of Gyanesh Kumar. What is your view on this?
7: I just know one thing, that when you want to stand with the right thing, stand with the right thing. Don't make your agendas only political agendas. Try to do what is right. Try to do what is right for once in your life, Congress. This is not the way it's going to happen.
4: So that's what the voice coming in from Malvika Devi, BJP MP. She's saying that at least try to do right thing once.
0: Before the protest march, Rahul Gandhi is addressing this press conference. Let's listen into this now.
8: Chalo Delhi, march for democracy. Gyanesh Kumar, election commission, vote chori. Iske liye pichle 4-5 dino Delhi mein पब्लिक मूवमेंट चल रहा है. रेजिस्टेंस तो बहुत पहले से थी, 10-12-13 साल से थी, बट अब पूरा का पूरा क्रिस्टलाइज हो रहा है. सवाल है कि व्हाई इज दिल्ली जेल्ड? Why is capital city of India in jail? People are being stopped from reaching Delhi. Trains, buses ko roka ja raha hai, logon ko utara ja raha hai. Delhi ko fortress bana diya, killa bana diya hai. सब जगह पुलिस, 20-30 हजार पुलिस. अब आप सोचोगे इतनी पावरफुल चीज है, पर हमारी स्ट्रेटजी दूसरी है. हम चाहते हैं कि 20,000-30,000 पुलिस वाले सड़क पे खड़े हों. ये हम चाहते हैं. और यह सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार को प्रोटेक्ट कर रही है. एक तरफ से हम कह रहे हैं हमें इस्तीफा चाहिए, मगर एक्चुअली हम चाहते हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जितना वो प्रोटेक्ट करेंगे अंत में हम उनके कंट्रोलर के पास जाएंगे. और दूसरी बात भी हो रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, जो हमें रिपोर्ट मिल रही है कि ये जो पुलिस वाले हैं ये भी बड़े डिस्टर्ब हैं. ये कह रहे हैं कि हमसे हिंदुस्तान के युवाओं को क्यों पिटवाया जा रहा है. पुलिस में सवाल पूछा जा रहा है कि हमें युवाओं को रोकने के लिए कहा जा रहा है, और फिर हमसे ही आरएसएस के लोगों को फ्री घूमने दिया जा रहा है. ये होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है. बीजेपी के गूंज, आरएसएस के गूंज महिलाओं को मार रहे हैं. एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के जो पेट्रियोटिक युवा हैं उनको आप मारिए, उन पे आप पैलेट गन चलाइए, और दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि देखिए ये जो आरएसएस के युवा हैं, क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, इनको आप छोड़िए और युवाओं को इनसे पिटाई करवाइए। इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं कि 50% पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं, 50% मैं गिन रहा हूं कि जो आप कर रहे हो सही है, करते जाओ। क्योंकि पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हिंदुस्तान की जनता, आप लोग, सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक तरफ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल, ज्ञानेश कुमार, ईसी में 4-5 लोग जो वोट चोरी करा रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया, वो एक तरफ, और हम इस डिवाइड को बढ़ाते जा रहे हैं।
9: आप जिस तरह से कर रहे हैं,
10: जबरदस्ती हमें कमरे से बाहर बुलाएंगे, तो आप अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहते।
11: 12 घंटे फिलहाल हम हाउस अरेस्ट हैं।
12: ये देखिए लड़कियां, सर
13: पे लड़कियों को सम्मान दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा।
14: एट दिस वीडियो केयरफुली।
15: मुंतजिर, मुंतजिर,
16: आरएसएस के लोग हैं जो लात जूतों से मार रहे हैं, हो गई है।
17: आरएसएस के दलाल यहाँ दोस्तों किस तरीके से प्रोटेस्टर्स को परेशान कर रहे हैं।
18: मैम ये सब मत करिए, आप समझिए, आप खामखा इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं।
19: देखो
18: एक बच्ची,
19: मेरा आइडिया भैया।
20: सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं है, शीशे लगे हुए हैं।
21: Mamata Ji as well. This is a prison van.
8: और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने पूछा कि ज्ञानेश कुमार रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, आजकल हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं, ये आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है। तो डोंट वरी, वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यू, वी नो योर पास्ट, वी अंडरस्टैंड ऑल योर करप्शन, वी हैव इट, वी आर वेटिंग। अब एक सवाल उठा, पहले दिन हमने कहा कि देखिए हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। विपक्ष के सारे नेता बिना हिंसा, बिना नफरत, मोहब्बत के साथ एक साथ वहां गए, हमें रोका गया, उठा के पुलिस बसेस में डाल दिया, धक्का मुक्की हुई। हमें कहा गया कि देखिए आप यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। फिर हमने कहा ठीक है, अगर यहां नहीं कर सकते तो बताइए कहां करें। पुलिस ऑफिसर कहता है आप अपने घर में कीजिए। मैंने कहा देखिए मैं घर में तो नहीं करूंगा, आप मुझे कोई भी जगह दे दीजिए दिल्ली में जहां बैठ सके ऑपोजिशन लीडर्स के साथ, हम बैठ जाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहते नहीं, अंदर कर दिया। दूसरे दिन डेजिग्नेटेड एरिया जो है प्रोटेस्ट का, जंतर मंतर, हमने कहा ठीक है आप हमें डेजिग्नेटेड एरिया में बैठने दीजिए, वहां रोक दिया। फिर से पिटाई हुई, ठीक है। उसके बाद हम गए राजघाट, राजघाट में सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स गए। कल आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे पिटाई हुई, स्टूडेंट्स को मारा, सॉरी परसों। और हम एस्केलेट करते करते इलेक्शन कमीशन, हम सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड आई रोट टू द सीजीआई एक्सप्रेसिंग आर ग्रेव कंसर्न अबाउट द मर्डर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन फेयरनेस। ऑनरेबल सीजीआई हैज रिस्पॉन्डेड एंड इंस्ट्रक्टेड अस टू फाइल अ पिटीशन। तो ये कंफ्यूजन है जो शायद सरकार को समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। कहा गया है कि सीजीआई सेड ही विल नॉट मीट ऑपोजिशन लीडर्स, दैट इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज रेलिवेंट। ऑनरेबल सीजीआई हैज रिस्पॉन्डेड एंड इंस्ट्रक्टेड अस टू फाइल ए पिटीशन, कि जो आपकी इश्यूज हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए, लीगल प्रोसेस शुरू कीजिए। आज इंडिया ब्लॉक लीडर्स और मैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक साथ हम ये पिटीशन फाइल करेंगे। देखिए जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, करोड़ों युवा हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देना, करोड़ों युवा हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो संविधान को अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आवाज है और इस आवाज को, सब लोगों की आवाज को हम अपना धर्म मानते हैं और इस पर आक्रमण हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि एक दिन हम गए वहां पे पुलिस ने रोका, जंतर मंतर गए वहां पुलिस ने रोका, स्टूडेंट्स ने संडे को प्रोटेस्ट किया वहां हमें रोका, आज हम जा रहे हैं आज हमें रोकेंगे। आपको लगता है कि ये एक दिन की बात है, ये जो रेजिस्टेंस है ये एक दिन की बात नहीं है, हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। और आप ये मत सोचिए कि ये पांच दिन पहले शुरू हुआ था, ये अब इसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, मगर सालों से ये रेजिस्टेंस चल रही है। तो मेरा आपसे कहना है परसिवियरेंस। आप सोच रहे हो कि हमारे लिए मुश्किल है, हमारे सामने पुलिस खड़ी है, पुलिस हमें मार रही है, लाठी लग रही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जितना आप थक रहे हो उससे दुगना पुलिस थक रही है। जितने सवाल आपके माइंड में है उतने सवाल पुलिस के माइंड में है। पुलिस अपने आप से पूछ रही है कि हो क्या रहा है, हम ज्ञानेश कुमार जैसे चोर को क्यों बचा रहे हैं, हम देश विरोधियों को क्यों बचा रहे हैं, हम युवाओं पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं, सवाल उनके माइंड में भी है। तो पेशेंस एंड परसिवियरेंस, लगे रहना है, पीछे नहीं हटना। आज करेंगे रोकेंगे, कल करेंगे रोकेंगे, परसों करेंगे रोकेंगे, रोकने दीजिए। देश ऐसे ही बनता है, देश दो दिन में प्रोटेक्ट नहीं होता। ये मत सोचिए कि बाहर आ गए, झंडा फहरा दिया और देश बच गया। नहीं, नहीं, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक महीना, दो महीना, जो भी लगेगा, जितने दिन लगेंगे, जितने महीने लगेंगे, जितने साल लगेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। और हम थकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सच्चाई हमारे साथ। जो झूठ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो थकेंगे, वो दिख रहा है मुझे, आप हैरान हो जाओगे। मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, आपकी सरकार के 200 अफसर हमारे टच में है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ईडी के अंदर, सीबीआई के अंदर, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, सारे के सारे हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कर जो करना है आपको करो, सच्चाई हमारे साथ है। फाइनल, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड नहीं होगा, जब तक इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएगा, जब तक इलेक्शन का जो सिस्टम है रिवैम्प नहीं होगा, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी हिंदुस्तान को, तब तक हिंदुस्तान का युवा नहीं रुकने वाला है। कर लो जो करना है। 5 criminals will face justice. 5 criminals have attacked the idea of India. हिंदुस्तान की आत्मा पर इन्होंने आक्रमण किया है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं रुकेंगे, कितना टाइम लगे लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया इज मार्चिंग, जॉइन अस टुडे 1:30 एट सीपी बाराखंबा जंक्शन। जिसको भी आना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना चाहता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर बीजेपी के लिए सोचते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, तो आप भी आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, हर जात का हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, आप आइए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कीजिए, क्योंकि दिल में आप सब जानते हो क्या हो रहा है, और वो पता लगेगा आस्ते आस्ते। नरेंद्र मोदी की पूरी ब्लूप्रिंट हमारे पास है, जन्मपत्री हमारे पास है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, ये राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन चीजों की बात नहीं है, इसमें हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान की है, इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन की है, हिंदुस्तान की जनता की, एक्सप्रेशन की है, हिंदुस्तान के फ्यूचर की है। और मैं ये हर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर से कह रहा हूं, हर कार्यकर्ता से कह रहा हूं, देश के हर युवा से कह रहा हूं, ये आपके फ्यूचर की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, आपकी आवाज की लड़ाई है, आपकी रिस्पेक्ट की, आपके आदर की, आपकी इज्जत की लड़ाई है, इसमें आप शामिल हुई है। अगर आप डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, कोई ना कोई कारण होगा, आपका जॉब है, कुछ और है, या आप जर्नलिस्ट से, आपको बताया गया कि भैया नहीं जाइए मत, हो सकता है, तो 3 बजे जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे पिटीशन फाइल करते हुए, आप हमें सॉलिडेरिटी दिखाइए, आप दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो, आप हिंदुस्तान के झंडे के साथ खड़े हो, जो भी तरीके से आप करना चाहते हैं करिए, खड़े होके, बैठ के, वीडियो बना के, जो भी आपको करना है करिए, बट आप अपना एक्सप्रेशन करिए, आप देश को बताइए जो हो रहा है हम उसके खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा धर्म है और हम ये नहीं होने देंगे, किसी को दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद कमरे में कर लो, बंद कमरे में जाके खड़े हो जाओ, चुप हो जाओ और अपने अंदर बोलो कि मैं देश को बचाऊंगा, मैं झंडे को बचाऊंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाऊंगा, मैं अपने बच्चों के भविष्य को बचाऊंगा। ये कह दो बस, बाहर आने की भी जरूरत नहीं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। तो ये मेरा मैसेज है। और जो डायरेक्टली डर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। कायर लोग हैं, इनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, अंदर से कोलैप्स कर रहा है। बस हमें खड़ा रहना है, परसिवियर करना है। वो दिखाना परसिवियरेंस वाली स्लाइड, ये परसिवियरेंस करना है। जो डायरेक्टली कर सकता है डायरेक्टली करो, जो इनडायरेक्टली कर सकता है इनडायरेक्टली करो, और जो अपने मन में करना चाहता है अपने मन में करो, मगर करो, क्योंकि ये देश आपका है। धन्यवाद।
14: क्वेश्चंस?
8: या
14: टाइम्स नाउ यामिका माइक गुड।
15: Hi sir, this is Niyamika from Times Now. Sir, we have spoken to the Chief Justice of India and he has categorically mentioned what you have also said, that any party or any individual can file a petition, but he has also given a response that the Supreme Court cannot be converted into a political battlefield. He himself is heading the bench which is now hearing the SIR petition. So why do you feel the need of taking out this march and asking all the people of this country to come together?
8: So there are multiple fights taking place. There is a

0: CSU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
4: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।

0: पूरे देश में एक ओपन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। जैसे आशुतोष ने बोला, ये हालात लास्ट 1975 में एक डिक्टेटोरियल रेजिम के अंडर देखा गया था। एंड शर्म की बात है कि इतने साल उसके बाद, इतने दशकों के बाद फिर से एक तानाशाह आज बैठा हुआ है जो पूरे देश को एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में डाल रहा है। यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, इतने संख्या में अगर लोग मोबिलाइज होके खुद ब खुद आ रहे हैं दिल्ली, वो आ रहे हैं क्योंकि उनको पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट करना है, एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में जाके प्रोटेस्ट करना है एंड अपना जो दुख दर्द पीड़ा आक्रोश है, जो अपने डिमांड्स है, उसको सामने रखना है। सरकार को तो बोलना चाहिए था कि आप हमारे पास आइए, एक डेलीगेशन लेके हमसे बात करिए और हम सुनेंगे और हम उस पर अमल करेंगे डिमांड्स को। लेकिन आज एक ऐसा सिचुएशन बना दिया गया वेयर द स्टेट इज एट वॉर विद इट्स ओन सिटीजन्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक जंग लड़ रही है पूरे देश के नागरिकों के साथ।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
0: Okay.
1: Oh, jeevan, nothing small about us.
2: senco se mera nata saalon purana hai, ye mere liye bas ek brand nahi hai,
3: ye hai ek legacy.
4: You know designs kitne lakh se bhi zyada dude
5: aur sare hai bis hallmark certified. खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी.
6: एक परिवार, अटूट भरोसा.
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
8: सोच बदलो और बैंक भी.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: welcome to the special coverage. We are reporting to you live from outside the Constitution Club, and that's where all the India Bloc MPs have gathered. Just a few minutes ago, Rahul Gandhi arrived along with Mallikarjun Kharge. Preeti is right here with me at the Constitution Club. So are our other reporters, in and around this area, even as protests gather, and the India Bloc leaders plan to petition the Supreme Court. Remember, Rahul Gandhi had reached out to the Supreme Court saying that they want to meet the Chief Justice of India. The Chief Justice of India denying that appointment, saying that cannot be the case because multiple special intensive revision petitions are before the court and they have to take a call on that. And even as we speak, two big developments have happened. One, the designated site in New Delhi district, which is Jantar Mantar of protest, has been denotified. So no protest can be held in central Delhi anymore. And the Delhi police has now given three alternative locations. These three alternate locations are Burari Ground, the Ramlila Ground, and CBD Ground. The other breaking which is coming in of the BJP, which is saying that this is Shivji ki Barat. BJP says, and in fact the BJP has compared this protest to Shivji ki Barat. It goes on to say this not just exposes Rahul Gandhi's anti-Hindu hate, this also tells you that this man, who's a Chunavi Hindu, is comparing himself to Bhagwan Shiv. Let's listen in to what has been said by the BJP.
1: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए. तो मैंने सिस्टर से कहा, तुम बात समझ नहीं रही हो. ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती. आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा. आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है. ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है. इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है. जिस मैंने बोला, गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं. मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए. तो मैंने सिस्टर से कहा, तुम बात समझ नहीं रही हो. ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती. आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा. आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है. ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है. इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है. जिस मैंने बोला, गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं.
2: So that was Rahul Gandhi, where right before the press conference, he used two analogies, one of Shivji ki Barat and Shivji ka Tandav. Shivji ka Tandav in terms of the kind of protest that has come together. And when he spoke of Shivji ki Barat, suggesting that people from all walks of life are now joining in this protest against the Chief Election Commissioner and the government, the BJP is clearly taking a very, very hard line. And also, once again, leaning on what they have usually when it comes to the Congress and Rahul Gandhi, calling Rahul Gandhi anti-Hindu by using the analogy of Shivji ka Tandav and Shivji ki Barat. Piyush, I want to draw you in on this conversation. There is clearly, a rethink in the last couple of days by the government of what was a softer stand now relatively earlier. There seems to be a clear crackdown. It's us against them. And once again, where Rahul Gandhi is concerned, BJP leaning in on what it always does, especially when Rahul Gandhi invokes, Hinduism in somewhat way, calling him anti-Hindu at the back of him using two analogies of Shivji ki Barat and Shivji ka Tandav.
3: Well, that's right, Priti. BJP is now using this entire video saying that Rahul Gandhi is comparing himself with Shivji, and the kind of statement which Rahul Gandhi has made certainly notifies that he is anti-Hindu. He is a Chunavi Hindu. This is what now the BJP is saying. So a big analogy has also been drawn by Bharatiya Janata Party. In few minutes from now, we will also see a press conference by Union Minister Shivraj Singh Chauhan, where he is most likely to attack the entire India bloc leaders for taking out this protest march. And also the kind of statements which Rahul Gandhi has made during the program of Chhatro Ke Goonj. But this entire analogy has somewhere drawn criticism at the part of BJP. We'll have to wait and watch how the Congress is going to react on this. But BJP is making a huge issue out of this entire video of Rahul Gandhi. Priti.
4: कैसे सर बढ़िया Piyush, a word also on what was happening outside the BJP, MPs protesting in front of the Congress headquarters. Is that protest over? What are you picking up?
3: Well, Maria, the protest has now come to an end. All BJP workers have left the spot. Many of them were detained and were taken to a nearby police station. As we are speaking, the protest has now concluded. The routes, those were diverted from Deen Dayal Upadhyay Marg towards the New Delhi railway station, has now been opened. The situation has turned into a normalcy has returned to the entire area. Yes, there is some traffic snarl because of the routes diversions, those were in place. We saw as to how a massive protest was taken out by the Bharatiya Janata Party, Maria, where they were demanding that Bimol Gomcha, who is Congress MP from Manipur, he should be sacked. They are also of the view that when the internal committee of Jawaharlal Nehru University has found him guilty and has suspended him after proper inquiry, then what is stopping Rahul Gandhi to take actions against him? Many women MPs of BJP were also of the view that we are women MPs, and when we enter in parliament, how can we tolerate a man who has allegedly sexually harassed 11 students of JNU sitting right next to us? And that's why they were demanding that he should be sacked, not only from the party, but also from the membership of Congress Party, and also as a member of parliament. So that's why they took out the huge protest. They're also demanding that Rahul Gandhi, who talks a lot about smash the patriarchy, who is nowadays leading the Chhatro Ki Goonj, what is stopping him from talking about Chhatras of Jawaharlal Nehru University? There are 11 women students of JNU who had leveled allegations against him, and now these allegations have come true. He has been suspended from JNU. Why actions are not being taken against Bimol? That's what the demand of BJP is. As we are speaking, the protest has now come to an end. All women BJP workers have gone back to the residences. Women MPs who were detained have been taken to a nearby police station. But one thing is clear, Maria, that BJP will continue to mount pressure on Congress Party over this and will continue to seek answers from Rahul Gandhi as they are planning district-wide protest, nationwide protest in front of Congress headquarters.
4: All right, Maria, the latest that I've gotten from my sources within the Congress is now there is an understanding that all India Alliance members will now take a bus. They will go in a bus is the latest that I've been given to understand. They will not take a march out from here. And they think that they will be stopped near Barakhamba Road. No time has been communicated to them till now of a delegation and who that delegation will comprise of in terms of... Now, what we do know is that there will be the India Alliance members who will be taking a bus from where you and I are standing on two opposite ends of the Constitution Club. And from here on, a bus with India Alliance members and other people who have come here, who have gathered here. Maria, I believe, so that is NSUI protest that is taking place right behind Maria, I see. But Maria, Over to you. More news break coming in. The CGI letter response to Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi has also, they're beaming the details of that out. Let's quickly cut across, getting our viewers details, Maria. India Today has accessed the CGI's letter details to Rahul Gandhi. The Chief Justice of India has declined a request for the meet with the India bloc. Issues referred by opposition still sub judice is one of the reasons that he's given. Issue raised are already before Supreme Court. Meet on pending cases against separation of power. Such a meet against judicial propriety. Such a meeting is against judicial propriety is what the Chief Justice of India has written back to Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. So, Maria, for what we know now, the India Alliance is going to take buses from here and will make their way towards the Supreme Court. They will follow Barakamba Road and Feroz Shah Road. But they have an inkling that they will be stopped at Barakamba Road. All right, let's cut across to Shambhavi. Has more news coming in. Shambhavi, where are you? What are you witnessing? Give us the latest.
5: Well, we have the letter that CGI wrote as a reply to the request of Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. So what Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge were seeking an appointment for meeting.
6: Basically gave the time from between 4 p.m. to 5 p.m. requested a meeting on certain issues that were happening. First was the blanket closing of all the metros. Then they also were seeking on the illegal detention. So these were the few points on which the PIL is already being heard in the Supreme Court.
5: So there was a special sitting on Sunday in the Supreme Court where several PILs were heard and they were on these grounds. Now, the letter that we have accessed, you can see that here CGI has mentioned the separation of power. He's also mentioned that Supreme Court does not have any administrative powers to deal with the issues that they have mentioned in their letter, seeking interference or seeking whatever kind of assistance they were seeking from the Supreme Court. So what the CGI in his letter wrote is that Supreme Court is very committed to make sure that the fundamental rights of all the citizens are protected, and their exercising of those fundamental rights are protected. So what you can do is you can invoke the judicial powers of the Supreme Court and file a petition. He informed in his letter that already on Tuesday, all the PILs which were filed will be heard. You are more than welcome to file a petition on Monday. They even briefed him that you can come physically to the Supreme Court and file your petition, or you can also file it online. And then I assure you that the matter, your concerns will be heard as soon as possible at the earliest. So this is the letter that the mail reply that CGI wrote to Rahul Gandhi and Kharge seeking appointment on the issues of arbitrary arrest, of the closure of metro station and cancellation
0: important point because
5: of train.
0: I'm looking at this letter which has been written by the Chief Justice to Rahul Gandhi and Mr. Mallikarjun Kharge. He says something also about the administrative powers. He is highlighting that as well, that these are administrative concerns besides the matter that the SIR cases are before the apex court. Justice Suryakant says, I also wish to remind you that within our constitutional framework, the Supreme Court of India is not endowed with any administrative powers to deal with the issues highlighted in your letter. However, in the exercise of our jurisdiction under Article 32 of our Constitution, along with our plenary powers, including that of judicial review, we are duty bound to consider on judicial side the reasons or the concerns of the citizens of India. So 3 to 4 points that are being made by the Chief Justice of India as to why he cannot meet Rahul Gandhi, but he has gone on to say that that Rahul Gandhi and the Congress leadership can go ahead and file a petition in person or online, and then that will be taken at the earliest. Let's listen in to what Rahul Gandhi said earlier today, and there was also a reaction that came in from the Chief Justice.
1: कहा गया है कि सीजेआई सेड ही विल नॉट मीट ऑपोजिशन लीडर्स. दैट इज नॉट रेलिवेंट. दिस इज रेलिवेंट. ऑनरेबल सीजेआई हैज रिस्पॉन्डेड एंड इंस्ट्रक्टेड अस टू फाइल ए पेटिशन कि जो आपके इश्यूज हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए, लीगल प्रोसेस शुरू कीजिए. आज इंडिया ब्लॉक लीडर्स और मैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक साथ हम ये पिटीशन फाइल करेंगे।
7: मैंने उनका, मेरे को कल लेटर मिला था, मैंने उसका कल रात में ही जवाब दे दिया है। मैं लेटर उनका परसों का है, मुझे, मैं कल मैं बाहर था तो मुझे, मेरे पास वो कल लेटर मुझे मिला था, तो मैंने उसका रात में उसका जवाब दे दिया है। मैंने कुछ रीजंस उसमें दिए हैं जिसके बेसिस पे मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि मैं मिल नहीं पाऊंगा।
8: और वो क्या रीजन आपकी तरफ से साइड किया गया?
7: नहीं, कान देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस लेटर के कंटेंट्स आप उनसे पूछिए, मैंने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की है।
9: रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट के भी हैं, उसमें किस तरह से आगे अपनी बात रखे? कल सीजेपी भी दो दिन से जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है।
7: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी पिटीशन किसी भी, कोई भी चाहे।
10: सड़क पे निकालना ये कांग्रेस की नियति बन गई है, और चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है। आज कांग्रेस की हालत क्या है? उत्तर प्रदेश में जूतम पैजार हो रही है, पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ा है, अलग अलग जगह नेतृत्व के झगड़े चल रहे हैं, कर्नाटक में कभी सिद्धरमैया कभी डीके शिवकुमार, तेलंगाना में कैसी जूतम पैजार। मैं फिर कहता हूं कांग्रेस के मित्रों, हार का कारण अगर कोई है तो कांग्रेस का नेतृत्व है, देश को नहीं जानता, देश की जनता को नहीं जानता, यहां के जीवन मूल्यों को नहीं जानता, यहां की परंपराओं को नहीं जानता, विचार शून्य नेतृत्व। कांग्रेस की हालत ये हो गई है, कांग्रेस नेतृत्व की नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस जनता की नजरों से भी उतर गई है और जनता के दिलों से भी उतर गई है। ये क्या संविधान की बात करेंगे? 90 से ज्यादा बार उन्होंने चुनी हुई सरकारें बदलने का पाप किया है, कपड़ों की तरह ये मुख्यमंत्री बदलते थे, देश में लोकतंत्र का गला घोंट के आपातकाल लगाया तो कांग्रेस ने लगाया, और आज कांग्रेस की हालत क्या है? देश के प्रमुख बड़े राज्यों में कांग्रेस का काफी पहले सफाया हो चुका है, तमिलनाडु में लगभग 59 वर्षों से कांग्रेस नहीं है, पश्चिम बंगाल में लगभग 49 वर्षों से कांग्रेस नहीं है, सिक्किम में 42 वर्षों से, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से, बिहार में 36 वर्षों से, त्रिपुरा में 33 वर्षों से, गुजरात में 31 वर्षों से, उड़ीसा में 26 वर्षों से, नागालैंड में 23 वर्षों से, गोवा में 15 साल से, दिल्ली में 13 वर्षों से, पूरा हिसाब तो देखिए कांग्रेस बची कहां। और 3-4 राज्य अगर छोड़ दें तो कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी केवल जूनियर पार्टी बनकर रह गई है, तमिलनाडु में डीएमके के सहारे, और वो सहारा भी, वो टेका भी अब हट रहा है, बिहार में भ्रष्ट आरजेडी के सहारे, यूपी में कभी एसपी तो कभी बीएसपी, झारखंड में जेएमएम, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक जूनियर पार्टनर और परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस कुर्सी के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है, वो जनता का दिल नहीं जीत सकती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, और इसलिए जब वो कहते हैं विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चलाते हुए, जब वो देश से आह्वान करते हैं वी विल डू इट, तो पूरा देश कहता है वी विल डू इट। और इसलिए परेशान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके, सड़कों पे अराजकता और दंगे फैला के, झूठ बोलकर गुमराह करके, अब कुर्सी चाहती, सत्ता में वापसी चाहती। कांग्रेस की हालत यह कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो कोर्ट पर हमले करती है, चुनाव हारती तो चुनाव आयोग पर हमले करती है, आतंकवादियों को जब सेना ठोंकती है तो सेना पर हमले करती है। भारत की प्रगति, 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को पचा पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो गया है। इसलिए मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अब देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह दिशाहीन है। अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन अब विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुका है। ये सत्ता के लिए कभी वामपंथियों का सहारा लेते हैं, कभी काकरोचों का, कभी जार्ज सोरस टाइप के देश विरोधी ताकतों का, कभी एनजीओज का। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मार्च 2023 में लंदन में विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों और लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की बात कही गई, आह्वान किया गया। ये क्या है, किसके सहारे रहेगी कांग्रेस? क्या विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाएगी? जनवरी 2025 में कांग्रेस के जब नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था, तब भी राहुल जी ने अपने भाषण में कहा था उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बल्कि वे इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये क्या है, राहुल गांधी जवाब दे। ये बताता है कि राहुल और कांग्रेस कितनी गिर चुके हैं। लेकिन सड़कों पर कितने भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर ले कांग्रेस, इससे सफलता नहीं मिलेगी। देश की नजरों में, जनता की नजरों में तो गिर ही चुकी है, आगे कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाएगा यह सुनिश्चित है। धन्यवाद जी।
11: एक मिनट, रवि जी का हो जाए पहले।

0: ना कोई दिशा है, ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है, जो खुद ही ये कहता हो कि मैं कोई प्लानिंग नहीं करता। उससे देश अपेक्षा और कांग्रेस अपेक्षा क्या कर सकती? हार का कारण मैं फिर कह रहा हूं यही विचार शून्यता है कि हम तो कोई प्लानिंग ही नहीं करते, जब जहां मन करे बस निकल पड़ेंगे। ये देश का भरोसा नहीं जीत सकते, खुद दिशाहीन है, इनको दिशा ही पता नहीं।
1: हिमांशु जी,
0: पहले तो न्यायपालिका के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या रहा है? इसके पहले भी पूर्व सीजेआई के मामले में इनके विचार कैसे थे? और सीजेआई से भी मिलना, तो सीजेआई से मिलने की भी प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि जब मन में आया चिट्ठी लिख दी और मिलने, ये नाटक है, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी।
1: आमू जी,
0: लोकतंत्र में विरोध रखने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग केवल बंधक बना दें सारी जनता की सुविधाओं को, ये नहीं किया जा सकता। जन सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है।
2: सर, आपने अभी कहा बीजेपी के बराबर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है जिस तरह के शब्दावली का अपने के द्वारा इस्तेमाल किया गया शिव जी के बराबर, आप लगते हो अपने आप को भगवान शिव से कंपेयर कर रहे हैं, शिव कह रहे हैं?
0: देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि देश, जीवन मूल्य, परंपराएं, आस्थाएं, इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको तो भगवान शिव के नाम को लेने का भी अधिकार नहीं है।
1: कमलेश जी,
3: सर, ये भी कहा कि हम जहां चाहेंगे वहां पर करें, आलो पे बल करें, बलों पे भरोसा करें, और साथ साथ ये भी कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहते हैं, कोई रोक तो
0: है। देश संविधान से चलता है, नियम प्रक्रियाओं से चलता है, किसी सिरफिरे की सनक से नहीं चलता।
1: ऐश्वर्य जी,
4: सर, जब राहुल गांधी से कांग्रेस के मणिपुर के सांसद के बारे में पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन आज किया और उनके खिलाफ जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं, राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोई पैरेलल प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, केवल एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो प्रधानमंत्री और सीसीए के खिलाफ।
0: उनको तो प्रधानमंत्री के अलावा कुछ दिखते ही नहीं है। सबसे बड़े रास्ते की बाधा है तो मोदी जी है। मोदी जी कैसे भारत के मुकुटमणि बने हुए ये पछता नहीं है तो सवेरे शाम दिन और रात सपने में भी मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं।
1: सुचित्रा, आपका प्रश्न।
0: राहुल गांधी आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उन पर उनकी पार्टी भरोसा नहीं करती।
1: अमृत के प्रश्न से समापन करते
5: हैं।
0: कांग्रेस को तो बयान देने का भी अधिकार नहीं है।
1: विकास जी, आपका प्रश्न रह गया था।
0: जब लाखों झूठे मरे होंगे तब कहीं श्रीमान राहुल गांधी जी पैदा हुए।
5: The press conference practically saying that the Congress and the opposition is playing into the foreign hand, once again insinuating that there is or there are foreign powers that are looking to foment trouble in India, and Rahul Gandhi, the Congress and India Alliance right now are trying to play into that. I want to give you a sense of where we are, and I'll ask my camera person Sachin to show you the bus on which our All India Alliance members have started rolling out of the Constitution Club. This would be the possible first checkpoint. You can see on the left-hand side, Rapid Action Force and the Delhi Police waiting for the bus to come in. It seems the bus will not be stopped here, but there will be a flashpoint a little ahead at Barakhamba Road is what I'm being given to understand. Right in front of the bus, there are members, certain groups of civil society, then NSUI students, cadre of the Samajwadi Party. Till now, Akhilesh Yadav has not joined in this protest. He was supposed to, but he's not there. Mamata Banerjee is in that bus, is what I've been told. But the bus has now started rolling out of the Constitution Club, slowly snaking its way and will be going onwards to Barakhamba Road and from there on to the Supreme Court. The first flashpoint right here itself at the Constitution Club. But that's the bus, Maria. It seems that the India Alliance members have not gotten any word on a possible delegation, and now with the CGI letter that we've accessed, it's very clear that there is no meeting between the Chief Justice of India and India Alliance members yet. The Congress and India Alliance now on top of a bus, lots of optics at play, political messaging loaded in that, and making the bus now making its way ahead. Most, Maria, is what at least we've been given to told, we've been given to understand. Congress workers, NSUI workers, left students are at Barakhamba Road because that's expected to be the first flashpoint.
6: Yes, Preeti, and as far as the Delhi Police and the kind of deployment that we are witnessing, CRPF, ITBP, a number of paramilitary forces all here where we are. We are right here, very close to the Parliament of India. Right behind me are multiple government offices, Shastri Bhavan and others. As far as the traffic movement in this road is concerned, the traffic is moving rather normally. The metro stations are functioning, so is the internet. Internet suspension, remember, has been made a point, when the Supreme Court yesterday, in its unprecedented hearing, held that hearing on a Sunday, said it very clearly that prima facie it appears to be violation of the fundamental right when the internet was suspended, where the trains were terminated and also the metros were shut. We are right here. You can see the deployment of the Delhi Police, but the traffic movement on this roundabout, this is the roundabout that will be taken by those buses which are being shown now on your television screens. Those are the buses on which the India Bloc MPs and the leaders are present, and they will be all heading towards the Barakhamba Road. Preeti, as far as the deployment is concerned on this roundabout, it appears to be a normal movement of traffic, but multiple barricades, multiple checkpoints that have been put in place to ensure that as far as the movement from Barakhamba to perhaps the Supreme Court, that's where we will be seeing the opposition strategy unfold. What will be the India Bloc strategy? Will they be petitioning, going in a delegation, just as they did when they went to the Raisina Hill, went straight to the President of India to meet the President and submitted that letter in which they raised concerns with regards to the functioning of the Election Commission. Preeti, over to you. What are you seeing?
5: Maria, it's of course the buses are closing in, which have leaders of the India Alliance. A lot of people walking in front of that in classic, political messaging through posters that they are carrying in their hand. they're going to just try and stay ahead as the bus starts moving towards Barakamba Road, because like I pointed out, the police here is not, and the Rapid Action Force is standing back. This, I'll ask my camera person Sachin to show you

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CSU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: ये बार बार कहते परमिशन नहीं है, तो आज बता दो कब आंदोलन करने दोगे, और आज अगर नहीं बताते आंदोलन कब, आंदोलन की तारीख क्या होगी, तो हम खुद आंदोलन की तारीख डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करो, एक नहीं 10 दिन अंदर रखो, 1 महीना अंदर रखो, 1 साल अंदर रखो, पीछे नहीं हटेंगे। अब बहुत हो चुका है, देश में पूरी तानाशाही लगा चुके ये लोग। एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया, स्टूडेंट्स को पीट रहे, अपोजिशन के एमपीज को पीट रहे, कल जॉन ब्रिटास जो एमपी है उनको ब्रूटली पीटा गया है। एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे गुंडागिरी पर उतर चुके हैं। क्यों नहीं आप वो वीडियो रिलीज कर रहे हो, आपने वो वीडियो एडिट करके चला रहे हो, अगर हिम्मत है तो पूरा वीडियो दिखाओ ना, जहां पर समझ में आएगा जनता को कि किस तरीके से आपने मुझे मेरे बेसिक राइट्स डिनाई करे। किसी को भी अरेस्ट करने के बाद, डिटेन करने के बाद उनके लॉयर के लॉयर को कॉल करना करने देना कि उनका लीगल राइट है, दिल्ली पुलिस ने वो तक भी नहीं करने दिया। और अभी मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे कि देखो अभिजीत की दादी की डेथ हो गई थी तो हमने अभिजीत को बोला कि दादी की डेथ हो गई है, हम नहीं चाहते तुम यहाँ रुको, तो रात के 3:30 बजे अरेस्ट पेपर लेकर क्यों आए मेरे पास।

जो लड़ाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थी, जो लड़ाई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ थी, वो लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने खिलाफ बना दी है। नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि कुछ भी करके वो ज्ञानेश कुमार को बचाएंगे। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि राजा की जान तोते में है। और यही चीज हम पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की और आगे बढ़ाने की, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शह पर काम कर रहा है, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है, और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए ज्ञानेश कुमार एस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स काम कर रहे हैं। देश के सबसे महान प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी महानता का तो पता नहीं, लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि जिस इमरजेंसी के बारे में हम सिर्फ सुना करते थे, जिस इमरजेंसी के कहानियां हमारे मां बाप हमें बताया करते थे, पिछले 72 घंटों में नरेंद्र मोदी ने उस इमरजेंसी को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि 1975 की इमरजेंसी में भी इस देश में ट्रेन्स बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ये तानाशाह इतना डरा हुआ है, इतना कायर है कि कल सैकड़ों की संख्या में इस देश में ट्रेनों को रद्द किया गया, लाखों की संख्या में देशवासियों को परेशान किया गया। पिछले 72 घंटों में इस देश में तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुई।

साहब 2024 में जब इलेक्शन कमिश्नर को बनाने का कानून लाया गया था, भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने खड़े होकर इस कानून की गलतियां और कमजोरियां बताई, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। आप जाकर देखिए, वीडियो आज भी है। अपोजिशन के लोग जो बोल नहीं सके, वो बात असदुद्दीन ओवैसी ने आपके तरफ से रखी थी। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर इलेक्शन कमिश्नर का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री और उनके बना है एक वजीर और कायदे हिस्बे इख्तलाफ का सिलेक्शन में है कमेटी में होगा, तो जाहिर है प्रधानमंत्री अपने आदमी को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे।

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।

कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं। ये लोगों का विश्वास उनमें से उड़ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

0: पूरे देश में एक ओपन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। जैसे आशुतोष ने बोला, ये हालात लास्ट 1975 में एक डिक्टेटोरियल रेजिम के अंडर देखा गया था। एंड शर्म की बात है कि इतने साल उसके बाद, इतने दशकों के बाद फिर से एक तानाशाह आज बैठा हुआ है जो पूरे देश को एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में डाल रहा है। यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, इतने संख्या में अगर लोग मोबिलाइज होके खुद ब खुद आ रहे हैं दिल्ली, वो आ रहे हैं क्योंकि उनको पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट करना है, एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में जाके प्रोटेस्ट करना है एंड अपना जो दुख दर्द पीड़ा आक्रोश है, जो अपने डिमांड्स है, उसको सामने रखना है। सरकार को तो बोलना चाहिए था कि आप हमारे पास आइए, एक डेलीगेशन लेके हमसे बात करिए और हम सुनेंगे और हम उस पर अमल करेंगे डिमांड्स को। लेकिन आज एक ऐसा सिचुएशन बना दिया गया वेयर द स्टेट इज एट वॉर विद इट्स ओन सिटीजन्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक जंग लड़ रही है पूरे देश के नागरिकों के साथ।
1: पावर्ड बाय एक्सिस बैंक, दिल से ओपन
2: म्यूचुअल फंड्स सही है। HMD Vibe 2 Pro 5G

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के लगभग 80 जजेस लंदन में राजनेताओं के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। आप उनको मिल सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उनके साथ डिनर कर सकते हो, लंच कर सकते हो मुख्यमंत्री के साथ। तब आपको ये जो नियम है, ये कानून है, उसकी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जब हम लोकतंत्र बचाने के लिए देश में वोट की चोरी, इलेक्शन की चोरी, ईवीएम में घोटाला, वोटर नाम डिलीट हो रहे हैं लाखों करोड़ों में, एक गुहार लेकर हम आपको मिलना चाहते हो, तो आप कहते हो हम राजनेताओं से नहीं मिलेंगे। ठीक है, जनता याद रखेगी।
1: राहुल गांधी जो है लगातार जनता को भड़काने के लिए अजीब अजीब सी भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, और भी लोगों को जो है ज्यादा करके ये भी इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि इलीगल जो एक्टिविटीज है उनमें भी सम्मिलित होने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है। जैसे कि आपने कहा 10 को भी उन्होंने ऐसी धमकियां दी थी कि हम कुछ बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं आया था। जो भी आए थे उनको जो है वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उनको परमिशन नहीं।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: So many payment apps, but which one is safe?
4: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: Senco se mera nata saalo purana hai. Ye mere liye bas ek brand nahi hai.
7: Ye hai ek legacy.
8: You know, designs kitne hain? Lakh se bhi zyada dude.
9: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
10: एक परिवार, अटूट भरोसा।
11: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
12: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
11: स्मॉल बैंक?
12: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस, एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस, प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
11: ओके
12: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

ये कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं। ये लोगों का विश्वास उनमें से उठ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

0: आपने सुना होगा LPA, LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है। अब वो LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी। अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है। और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स। हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है। और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो तो हिंदुस्तानी में 3 गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाता
1: है।
0: सो वी आर सफरिंग फ्रॉम 2 साइड्स ऑफ जेनेटिक्स। और फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन। 30% एडल्ट्स अबव द एज ऑफ 30 हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो HDL कोलेस्ट्रॉल और रेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली।

0: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। क्यों राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। ये दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।
1: ये कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं, ये लोगों का विश्वास उनमें से उड़ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

पुलिस में सवाल पूछा जा रहा है कि हमें युवाओं को रोकने के लिए कहा जा रहा है और फिर हमसे ही आरएसएस के लोगों को फ्री घूमने दिया जा रहा है। ये होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी के गूंज, आरएसएस के गूंज महिलाओं को मार रहे हैं। एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के जो पेट्रियोटिक युवा हैं उनको आप मारिए, उन पे आप पैलेट गन चलाइए, और दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि देखिए ये जो आरएसएस के युवा हैं क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, इनको आप छोड़िए और युवाओं को इनसे पिटाई करवाइए। इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं कि 50% पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं, 50% मैं गिन रहा हूं कि जो आप कर रहे हो सही है, करते जाओ। क्योंकि पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हिंदुस्तान की जनता, आप लोग, सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक तरफ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल, ज्ञानेश कुमार, ईसी में 4-5 लोग जो वोट चोरी करा रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया, वो एक तरफ, और हम इस डिवाइड को बढ़ाते जा रहे हैं।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
2: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
3: So many payment apps, but which one is safe?
4: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: हर बार वही gold jewelry कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई-नई gold jewelry खरीदना भी तो impractical है. तो फिर Senco का old gold exchange.
7: एंजॉय करे 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
10: सोच बदलो और बैंक भी

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।

0: एक जूनियर पार्टनर और परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस कुर्सी के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। वो जनता का दिल नहीं जीत सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, और इसलिए जब वो कहते हैं विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चलाते हुए, जब वो देश से आह्वान करते हैं वी विल डू इट, तो पूरा देश कहता है वी विल डू इट। और इसलिए परेशान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके, सड़कों पे अराजकता और दंगे फैला के, झूठ बोलकर गुमराह करके अब कुर्सी चाहती है, सत्ता में वापसी चाहती है। कांग्रेस की हालत यह कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो कोर्ट पर हमले करती है, चुनाव हारती तो चुनाव आयोग पर हमले करती है, आतंकवादियों को जब सेना ठोंकती है तो सेना पर हमले करती है। भारत की प्रगति और 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को पचा पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो गया है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं। ये लोगों का विश्वास उनमें से उड़ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

0: आपने सुना होगा LPA, LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है। अब वो LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी। अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है, और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स, हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है। और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो तो हिंदुस्तानी में तीन गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाता
1: है।
0: सो वी आर सफरिंग फ्रॉम टू साइड्स ऑफ जेनेटिक्स। और फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन, 30% एडल्ट्स अबव द एज ऑफ 30 हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो HDL कोलेस्ट्रॉल और रेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स, तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली।
2: Powered by Greenply, हर जरूरत का रिप्लाई। Co-powered by Veka, India's largest selling UPVC window.

आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।

0: open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege rdf. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: So many payment apps, but which one is safe?
3: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले.
6: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
7: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट.
8: एक परिवार अटूट भरोसा.
9: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. एयू
10: सोच बदलो और बैंक भी.

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं। ये लोगों का विश्वास उनमें से उड़ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

0: थ्रू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

आपने सुना होगा LPA, LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है। अब LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी। अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है। और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स। हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है। और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो तो हिंदुस्तानी में तीन गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाता है। सो वी आर सफरिंग फ्रॉम टू साइड्स ऑफ जेनेटिक्स। और फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन। 30% एडल्ट्स अबव द एज ऑफ 30 हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो HDL कोलेस्ट्रॉल और रेस ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली।

0: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। और राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। ये दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।
1: ये कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं। ये लोगों का विश्वास उनमें से उड़ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

0: इस हॉल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके 26/11 नजदीक से नहीं देखा होगा, 26/11/2008, बिकॉज हम सब मुंबई में हैं और मुंबई में, पूरे देश में, हालांकि पूरे दुनिया में, लेकिन मुंबई में रहने वालों ने उसे देखा है, जिया है, और उसके बाद जो ट्रायल भी चला वो भी बड़ी नजदीक से देखा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उज्जवल निकम साहब को मुंबई से जुड़ी हुई अहम ट्रायल्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए नहीं देखा हो। और मैं उज्जवल निकम साहब को 25 साल से जानता हूं और पहली बार मुझे आश्चर्य लग रहा है कि मैं फिल्म पर उनसे बातचीत करने वाला हूं। तो यह फिल्म प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम, राजकुमार राव उज्जवल निकम का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि रियल उज्जवल निकम और रियल उज्जवल निकम मेरे साथ यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन यह स्टोरी सिर्फ उज्जवल निकम साहब की नहीं है, यह पूरे भारत की स्टोरी है। भारत जिस डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, संविधान में विश्वास रखता है, और ये इंश्योर करता है कि जिसने मुंबई में आकर आतंक फैलाया उस कसाब को भी भारतीय संविधान के जरिए सजा मिले, ये इंश्योर कराने की भी ये स्टोरी है। इसलिए ये फिल्म भी बहुत अहम रहेगी और हमारा कॉन्वर्सेशन भी उसी तरीके से अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप इंडिया टुडे के इस मंच पर आए और हमसे इस मंच पर बात कर रहे हैं। निकम साहब, सबसे पहले आई मीन आई वॉज रियली सरप्राइज दैट आई नेवर थॉट दैट यू विल अग्री टू द फिल्म। हु अप्रोच्ड यू फॉर द फिल्म एंड व्हाट वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई मीन आई रियली वॉन्टेड टू नो दैट।
1: लेट मी फेयरली कंसीड दैट टू ईयर्स बैक Madoff Films Dinesh Vijan and the director of this movie, Avinash Arun, they approached me. And informally, initially they discussed with me about the facts of the 26th November. And the facts which have never come on the record, also we discuss with a writer that you will not divulge these facts which I am telling you behind the curtain in any way. And they promised me. But the moot question that crop up in my mind as to why they would like to have all these facts of the 26th November. Then they told me ki they would like to do movie on this. मैंने बिल्कुल कह दिया कि अरे भाई 26/11 की इस पे तो बहुत मूवीज आ गई, इज देयर एनी फन इन दैट मूवी? दे सेड नो मिस्टर निकम, देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच आर डवेलिंग इन अवर माइंड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाई दिस ट्रायल हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम, सेकंड क्वेश्चन दैट व्हाई यू आर इंसिस्टिंग that Kasab should be tried according to our law, and what is the propriety after conducting this trial, what you are going to say? I like those three questions, because when the trial was commenced, Kasab has played different tactics, and it is but natural that everybody was raising this question when Kasab had confessed. Why Nikam is not accepting that confession? Again, the Kasab again dislodged that confession. And they said that we would like to answer all these questions in the movie. Then I said, okay, go by. Because in a way, indirectly, they were acting as my advocate in the film, to reply to the public at large. And naturally I asked, who is going to play my role?
0: You had anybody in mind that who can play your role better?
1: No, I am a doctor. But they told me Rajkumar Rao.
0: Acha.
1: And fine.
0: So what is your side of the story? When did they approach you? Did you know Ujjwal Nikam before? Had you watched him on television? Because since 2007 he has always been on television. Have you ever watched him representing or speaking in the media?
2: I shifted to Mumbai in 2008 in February, and 2000, in November, these attacks happened, and of course, all of us were in shock, were angry. We were in front of our television sets for those 3 days, and then we were following the case. We got to know that one of the terrorists, got caught, and then we started hearing his name, that Ujjwal Nikam will be the special public prosecutor, and he will be prosecuting him, and Yeah, that's about it. I heard about him. I heard about him before also during 93 Blast case. I was, of course, very young, but that case went on for a while, so I knew of him. But I never thought in my wildest dreams that one day another boy from FTII, Avinash Arun, who was my 1 year junior from FTII, he would come up to me and say, "Okay, bhai, I'm making this biopic and I want you to play Ujjwal Nikam." So I think this came full circle for me. When this film was offered to me, I loved the man. I loved his what he has done for the country and for the state. But when I read the script, I was absolutely mesmerized because there were so many answers to so many questions, as he rightly said. You know, we all know, as laymen, we all know that Kasab was caught and he was hanged after the trial. But what happened inside the courtroom? A lot of people have those questions.
0: And why, the whole process.
2: The whole process. Why it took so long? I think that our film replies to all those questions. And it's a great drama. It's a courtroom drama. It focuses on his life also, on his sacrifices. That from 93 to 2007, he was in Mumbai living in a small room in a hotel, in a two-three-star hotel. And every weekend going back to Jalgaon by a train and coming back Sunday night, again focusing on the case. And the moment that case got over, next year, 26 Gyara happened. And the same thing started again for him. So there were so many sacrifices on his behalf. For the country. So I was very happy that, you know, Avinash thought of me to play this part, because I was scared, to be honest. Initially I was scared because there's no match. Like, you know, there's no physicality. Sometimes we cast people because there's some similarity, but there was no match. I had to play a certain age. But my thing is, when jab koi cheez darati hai to mujhe usko aur karne ka man karta hai, because I feel something. I would push myself to go way beyond my comfort zone, and I'm glad this happened with Prahar.
0: ये इसमें untold story क्या क्या है? जो dialogues यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसमें से कौन से dialogues आपने सचमुच में
1: इंतजार किया?
0: आपने लिखा है dialogues या
1: इंतजार कीजिए 16 अक्टूबर को पूरी मालूमात हो जाएगी.
2: See how he's fully trained now to give film interviews. इसके लिए आप film देखी है, ऐसा हम बोलते हैं.
0: Are there any conditions from you? कि आप फिल्म बना रहे तो ये कंडीशन होनी चाहिए.
1: नहीं, मेरी पहली कंडीशन तो यही थी. There should not be any glorification of any character. And they promised me कि yes, will not glorify, even including myself. And but I told them, then you use the real names of all the characters who have participated in this legal proceeding. They said yes, and they have taken the no objection certificate from the concerned people. Even from the judge also, Mr. Tailani, who had delivered the judgment. So this is one of the beauty. And secondly, some part of my life they have shown it. And my arguments, and you have seen my arguments in the court, especially Sahil. Let me praise Mr. Rajkumar Rao here. Because Rajkumar Rao lived like Ujjwal Nikam, I would say. That emphatically, forcefully, some points of the submission. Wahi Josh Rajkumar mein dikha. I said, Rajkumar is very silent, soft. So I was shocked when I saw the trailer and other things. And many friends of my lawyers who said, Mr. Nikam, whether Raj was moving along with you, he heard you. I said, no, the Raj will tell you the story.
0: Normally, Nikam sahab bahut, मतलब वो बात करने में थकते नहीं है, वो हम लोग कितने भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. एज यू सेड, यू आर वेरी साइलेंट. डिड यू एक्चुअली वॉच हिम इन द कोर्ट, और हाउ डिड यू प्रिपेयर?
2: नो, आई डिडंट.
0: देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्ट रूम ड्रामास, यू नो, वी हैव सीन. बच्चन हैज प्लेड अ लॉयर, सनी देओल हैज प्लेड अ रॉयल. आई मीन, अगर आम फिल्म इंडस्ट्री में देखे तो तारीख पे तारीख इज द लॉयर. आई मीन, फॉर लॉट ऑफ पीपल, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस?
2: नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर सम फिल्म्स जो कोर्ट रूम पे बनी है, जिसमें तारीख पे तारीख ही नहीं है सर, जो वी आर वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो. वन इज कॉल्ड शाहिद, जो मैंने की थी.
0: एक मिनट, आपने जिक्र छेड़ा है तो जरा प्लीज दिखा दीजिए पीछे.
2: yeah.
0: और शाहिद की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वी हैव दैट पिक्चर, आई गेस, यू नो, यू प्लेइंग शाहिद. इफ यू हैव इट, जस्ट शो इट बिहाइंड, बिकॉज द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज 2611 में शाहिद आजमी जो एक्यूज थे, फहीम अंसारी एंड सबाउद्दीन, उनके लॉयर के तौर पर शाहिद आजमी थे. और पहला नेशनल अवार्ड राजकुमार राव को शाहिद के रोल के लिए मिला था, राइट? एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि अभी राजकुमार राव इज प्लेइंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु कसाब को जिन्होंने हैंग करवाया, तो कैसा डिफरेंस था ये, कैसे ये हुआ? बिकॉज यू मेंशन शायद, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट.
2: नो, बहुत डिफरेंट था, बिकॉज दिस वाज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट. नो, दिस वाज अबाउट मोर देन वन पर्सन, इट वाज अबाउट मोर देन कसाब. ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने का केस था ग्लोबली, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत इन्वॉल्व थी. एंड बीइंग अ डिफेंस लॉयर, इट्स वेरी पर्सनल. इट्स इन्वेस्टिंग इन दैट वन पर्सन एंड हाउ टू यू नो गेट हिम फ्री. सो इट्स वेरी डिफरेंट बोथ द स्टोरीज. एंड दैट वॉज मोर, देर वॉज अ मोर लाइफ फोकसिंग ऑन टूवर्ड्स हिज होल लाइफ. दिस इज मोर अबाउट हिज लाइफ. दिस इज mostly about 26 Gyarakh case, and of course, as he said,

0: And the only his mistake was that he has fairly admitted in our meeting that yes, it's our mistake. Because Zulfikar was also conducting case against the Bhutto. That is on the record. You'll find out who was Zulfikar and why. He had been to India and is a good gentleman, I must say, because he fairly admitted. So this type of atmosphere was going on.
1: The whole case was very dramatic. I mean, every sequence of the trials since 2611, I mean, the charge sheet was filed after a year. The trial went on for a few years. Every sequence is very dramatic. What was the most tough scene for you as an actor while playing Ujjwal Nikam, either in the court or outside the court? Which was the toughest scene for you?
2: No, so many of them, to be honest. Like in the courtroom, of course, I read the script, but still on the day of shoot, when especially in the trailer when we saw that little kid.
1: Yes.
2: When she came, and all of them were brilliant actors, you know, playing small parts. So when the kid came and she started giving her testimony as an actor, she started, you know, just saying her lines, her monologue. I remember everybody in the courtroom was just silent. And it was because she was doing it so well, as if we all were just reliving those experiences. And the kind of environment, Avinash, the credit goes to him, he created on set that, you know, no matter whose shot it is, everybody would be in the courtroom. There were some 50 extras every day in the courtroom. They would just be there, no matter if the camera is not on them. They would still be reacting. Lalit, who's a brilliant actor playing
1: Prabhakar,
2: he would sit quietly on his stand, no matter if it's shot there or not. I would do that. I would say my monologue. So it was a beautiful set. It was a brilliant environment. And so many such, you know, actors who came and performed and relived those horrific experiences were really very emotional for all of us. And then just to, as he said, he used to go back every Friday, and Jyoti ma'am, who was battling cancer.
1: Yeah.
2: And before he didn't tell the world, actually she was the one who didn't even tell him that, you know, she was suffering from cancer, because she didn't want him to get into any kind of mental trauma or mental trouble while he was fighting such an important case. So just that struggle of going back home with the love of his life, his life partner is suffering and battling cancer, but he still has to work and be present at the court the next day. I think that all those moments were really, in a way, emotionally beautiful for me as an actor.
1: Actually, Nikam sahab, maine kabhi aapse pucha nahi, lekin mujhe bahut saalon se aapse ye puchna tha. Jab aap pehli baar kasab ko mile, Anda Sel mein, Arthur Rothschild ke bhitar, how was it? I mean, is that scene there in the film? I mean, don't reveal much, but is that scene there in the film when you first met Kasab as a public prosecutor?
0: That does not be part of the film.
1: Okay.
0: But I met him immediately after his arrest.
1: Because yahan par trailer mein humne dekha ki aap usko keh rahe hain ki mujhe chahiye ki aap matlab aap andar se mehsoos karo.
0: I mean, my regular habit to interact with any criminal.
1: Yeah.
0: This is my practice. Psychologically, मैं बहुत मानता हूँ क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स ए कोडिफाइड लॉजिक, और लॉजिकली तुम किस तरह से हैंडल करे, कानून तो अपना तरीका करता है, लेकिन लॉजिकली इफ यू विल पिन डाउन हिम देन ही रियलाइजेस कि क्या होने वाला है ट्रायल में. सी आई मेट कसाब ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स इन द कोर्ट इटसेल्फ. आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, इंटरेक्ट टू हिम.
1: फर्स्ट टाइम जब मिले,
0: first time on record, I can say, in the court. See, so many cameras are here, so I can't divulge many more things. Ultimately, it's a question of the security of the stage.
1: चलिए जगह छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप पहले मिले थे, what was the emotion? What was the conversation?
0: साहिल, एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि कसाब इतना बदमाश था, उसे पूरी तरह से ट्रेन दिया गया था. पुलिस ने पकड़ा तो क्या स्टैंड लेने का, कोर्ट में क्या बयान देने का, और मीडिया के देख पर क्या बयान देने का, और आपका पूरा मीडिया का ध्यान उसके बॉडी एक्शन पे था. तो कई बार आपका ध्यान, उसका ध्यान आपके तरफ, वो हम थोड़ा खींच लेते थे मटन बिरयानी करके. सो वी
1: वो है मटन बिरयानी वाला.
0: See,
1: जो मैं कह रहा था कि बाहर वाला बैटल.
0: लिसन, आई नो हाउ टू मेके नैरेटिव ऑल्सो. आजकल तो नैरेटिव का जमाना है, मीडिया तो थोड़ी सी थर कर देती है, तो हम भी कर सकते हैं. तो कसाब को मिले थे हम कोर्ट में, बट आई ऑन नंबर ऑफ ओकेजन आई यूज्ड टू टॉक हिम, एंड स्टिल आई रिमेंबर, ऑफकोर्स दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म. मैंने कसाब को यह बात कही थी कि कसाब आस्क्ड मी, कसाब यूज्ड टू कॉल मी एज अ बादशाह इन द कोर्ट.
1: बादशाह
0: तो बादशाह मुझे एक सिगरेट चाहिए, तो मतलब जरूर दूंगा सिगरेट, एक क्या मैं तुझे पूरा पैकेट दूंगा, बट यू हैव टू डाइवल सच थिंग विच यू हैव नेवर रिवील टू द पुलिस। थोड़ा ऐसा देखा, सब मैंने तो सब बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं मैंने। मतलब नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तेरे जहन में तू इतना इंटेलिजेंट है लड़का, तो तू कभी बताता है मैं बॉलीवुड पे आया देखने को आया था, कभी बताता है 6 नवंबर को आया था, अलग अलग स्टोरी बनाता है। सो यू हैव डाइवल्ज दैट रियल स्टोरी क्या है जो पुलिस को तूने नहीं बताई अब तक, कन्फेशन में नहीं बताई। तो उसने कहा कि सर हम रिगल सिनेमा के थिएटर पे जाने वाले थे। रिगल सिनेमा? सी वी हैव द रिगल सिनेमा थिएटर। कब जाने वाले थे? दिस इज स्टोरी विच यू हैव नेवर हर्ड ऑल्सो, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग।
1: रिगल सिनेमा का टिकट खरीदा था
0: है? मैंने उसको कहा कि जब सीएसटी से निकले, स्टेशन पर से निकले आप, तो रिगल पे जाने वाले थे, बट द पुलिस हैव स्टार्टेड, पुलिस वर चेसिंग हिम, सो हिज उसका प्लान मिस हो गया, एंड देन एंट्री इनटू द कामा हॉस्पिटल। तो उसने कहा कि रिगल सिनेमा, मैंने फिर उसके कहा झूठा है, चल बंबई में रिगल सिनेमा थिएटर नहीं है, देयर इज नो सच रिगल सिनेमा। देन ही रिडिकुलसली सेड, देन बादशाह तुमको पता नहीं है फिर। सी आई वाज शॉक्ड।
1: बट क्या ये फिल्म देखने के बाद लोगों को वो स्टोरी पता चल पाएगी कि जो 26/11 की स्टोरी मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है, जो अब तक बाहर नहीं आई है? ऐसी कौन सी चीज हमें देखने को मिली?
2: ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उस कोर्टरूम में हुई, यू नो जब ये केस चल रहा था मुंबई में, तो ऐसी बहुत सारी, वो इसलिए ये फिल्म इंपॉर्टेंट है कि जानना कि उस कोर्टरूम के अंदर क्या हुआ था। जैसे सर ने बताया कि वो इतना ड्रामा करता था, हर दिन अपनी कहानी बदलता था, पर कैसे एज ए प्रोसिक्यूटर उन्होंने हर बार उसकी कहानी को गलत प्रूव किया और उसके उसके अंजाम तक पहुंचाया। अपनी जिंदगी में भी इतनी स्ट्रगल चलती रही, उनकी पर्सनल लाइफ में भी, तो ये बहुत कुछ है ऐसा जो आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा है और देखा है।
1: व्हाट इज द टेक अवे दिस फिल्म, आई मीन पीपल शुड टेक फ्रॉम दिस फिल्म, व्हाट डू यू थिंक कि जो नहीं पता है लोगों को, राजकुमार कह रहे हैं कि जो चीजें देखने मिलेगी, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा टेक अवे होना चाहिए इस फिल्म का लोगों को?
0: हमारा संविधान सबसे बड़ा है, यही मैं कहूंगा, बिकॉज यू सी कसाब वॉज डिफेंडेड बाई 2 lawyers, eminent lawyers, यू नो, एंड आई वॉज प्रोसिक्यूटिंग दी अजमल कसाब, बट सी दिस लीगल प्रोसेस, एंड आई एम ग्लैड टू से दैट इन पाकिस्तान ऑल्सो दे नेवर रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द कंडक्ट मैनर ऑफ द कंडक्टिंग द ट्रायल, एंड दे नेवर रेज अदरवाइज एनी क्वेश्चन डाउटिंग अवर इंडियन जुडिशरी, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ। पर राजी मैं एक आपको सवाल पूछूंगा।
1: क्या बात है?
0: कि आपने कभी मेरे साथ नहीं आए, यू हैव नॉट सीन मी व्हाइल परफॉर्मिंग और व्हाइल आर्ग्यूइंग द मैटर, बिकॉज टू आर्ग्यू द मैटर इन अ क्रिमिनल कोर्ट एज अ डिफरेंट कैनोटेशन विच आई बिलीव, बट आपने ये कैसे पिकअप किया? ये पढ़ के नहीं होता, क्योंकि आपने जो भी मेरे वीडियोज देखे होंगे वो इनके साथ के वीडियोज होंगे, मीडिया के साथ के, बट कोर्ट में बॉडी लैंग्वेज दिस एम्फेटिकली, स्टिल आई एम डूइंग दैट, बट हाउ यू हैव पिक्ड अप, व्हाट इज, हाउ इज इट
1: Is it different inside the court and outside the court?
2: Oh yeah, absolutely. It is completely different. Yeah. It is different. His energy is very different in the courtroom. Sir, honestly बताऊँ, मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। I think because आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में इतना मैं समझ रहा था, पढ़ रहा था, mentally you as an actor you try and imbibe those traits. तो वो इतना जब हो रहा था, और क्योंकि 26/11 आप भी I'm sure उतने impacted थे उससे जितना as a citizen मैं था, इस कंट्री का सिटीजन, उतना गुस्सा मुझे भी था। तो वो जो जब कोर्ट रूम की जब शुरू हुई, आर्ग्यूमेंट शुरू हुए, तो वो राज का और उज्जवल निकम का गुस्सा मिलके उज्जवल निकम की आवाज और बॉडी लैंग्वेज में बाहर आ रहा था। आई थिंक
0: बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्शन हम कोर्ट में वैसे करते, मैं तो करता हूँ, और 250 होल्ड का करण कैसे आ गया था उसमें?
2: सर वो आई थिंक माँ सरस्वती ने दे दिया मुझे कि कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छी फिल्म बना रहा है, ये ले।
0: रियली आई प्रेस्ड।
1: अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है हमने, आई होप कि वहां जाकर एक्चुअली हमें पता चलेगा कि निकम साहब कैसे दिखते हैं एक्चुअली ऑन स्क्रीन, एंड वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। सर थैंक यू सो मच, एक्चुअली आप
2: थैंक यू।

आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। और राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। ये दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।

एक जूनियर पार्टनर और परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस कुर्सी के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। वो जनता का दिल नहीं जीत सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, और इसलिए जब वो कहते हैं विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चलाते हुए, जब वो देश से आह्वान करते हैं वी विल डू इट, तो पूरा देश कहता है वी विल डू इट। और इसलिए परेशान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके सड़कों पे अराजकता और दंगे फैला के झूठ बोलकर गुमराह करके अब कुर्सी चाहती, सत्ता में वापसी चाहती। कांग्रेस की हालत यह कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो कोर्ट पर हमले करती है, चुनाव हारती तो चुनाव आयोग पर हमले करती है, आतंकवादियों को जब सेना ठोंकती है तो सेना पर हमले करती है। भारत की प्रगति और 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को पचा पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो गया है।

एक जूनियर पार्टनर और परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस कुर्सी के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। वो जनता का दिल नहीं जीत सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, और इसलिए जब वो कहते हैं विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चलाते हुए, जब वो देश से आह्वान करते हैं वी विल डू इट, तो पूरा देश कहता है वी विल डू इट। और इसलिए परेशान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके सड़कों पे अराजकता और दंगे फैला के झूठ बोलकर गुमराह करके अब कुर्सी चाहती, सत्ता में वापसी चाहती। कांग्रेस की हालत यह कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो कोर्ट पर हमले करती है, चुनाव हारती तो चुनाव आयोग पर हमले करती है, आतंकवादियों को जब सेना ठोंकती है तो सेना पर हमले करती है। भारत की प्रगति और 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को पचा पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो गया है।

0: साहब 2024 में जब इलेक्शन कमिश्नर को बनाने का कानून लाया गया था, भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने खड़े होकर इस कानून की गलतियां और कमजोरियां बताई, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। आप जाकर देखिए, वीडियो आज भी है। अपोजिशन के लोग जो बोल नहीं सके, वो बात असदुद्दीन ओवैसी ने आपके तरफ से रखी थी। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर इलेक्शन कमिश्नर का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री और उनके बना है एक वजीर और कायदे हिजबे इख्तलाफ का सिलेक्शन में है कमेटी में होगा, तो जाहिर है प्रधानमंत्री अपने आदमी को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.